भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

आराधना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

आराधना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे थे 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए अनुमति

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

91.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: दुनिया जो
1: कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: चलन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे
3: तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ।
2: अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का, कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: रेशम की डोर

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: चल कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे। नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है, खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती, उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट,
0: टेस्ट।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और चला पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं,

और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसकी सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है ये लोग?

दोस्तों, मिट्टी का मिट्टी तक का सफर बहुत बड़ा होकर भी कहां जाएगा, अंत में तो मिट्टी में ही समा जाएगा। ये तन, ये दौलत, ये शान, ये नाम सब वक्त की लहरों में खो जाएगा। जोड़ ले जितना चाहे और खजाना, ना कोई ताज रहेगा ना कोई ठिकाना। जो आज तेरा है कल किसी और का होगा, ये संसार बस एक चलती कहानी सा होगा। साथ चलने वाले भी एक एक कर बिछड़ जाएंगे, यादों के साए भी एक दिन धुंधला जाएंगे। इतने संगी, इतने साथी, इतने प्यारे कफन ओढ़ कर सब तन्हा रह जाएंगे। क्यों चिंता करते हो इस नश्वर शरीर की, जिसे एक दिन काल अपनी गोद में सुला जाएगा। सच्चा धन वो नहीं जो हाथों में है, बल्कि सच्चा धन वो है जो दिल से दुनिया को दे जाएगा। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, रुचिका की ढेर सारी खास बातों के साथ। और आज का दिन भी बहुत खास है, बहुत अहमियत है आज के दिन की हमारी जिंदगी में। तो दोस्तों, आज 12 जुलाई 2026 का दिन, रविवार का दिन, सेकंड सैटरडे की छुट्टी आप सभी ने मनाई, आज संडे की छुट्टी आप सभी मना रहे हैं। तो कितना समय आपने अपनों के साथ बिताया और कितना समय आज आप अपनों के साथ बिताने वाले हैं, क्योंकि ये खास पल हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। इंसान ऐसे बिछड़ रहे हैं जिंदगी से, अपने जो हमारे बहुत करीबी, वो इतने दूर जा चुके कि हम चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकते। तो हर दिन की एक नई शुरुआत, किसी की जिंदगी में खुशी के साथ तो किसी की जिंदगी में दुख के साथ, लेकिन जिंदगी का नाम है चलते रहना। तो आप सभी को भी बस हिम्मत बांध कर जुनून के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और 9:06 हो चुके हैं। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर अब आप सभी ढेर सारी बातों और प्यारे प्यारे से गीतों के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो और क्या खास आज के कार्यक्रम में रहने वाला है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खास बातें आज के दिन की जरूर जानेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन बातचीत के साथ साथ मनोरंजन का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं। किसका इंतजार है, क्योंकि मैं भी जुड़ चुकी हूँ और आप भी जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा, खूबसूरत सा, मीठा सा गीत आप सभी के लिए।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। दिल ने दिल से क्या कहा, तो दिल से बहुत कुछ कहता है, क्योंकि दिल का ही तो ये मामला है। पूरी जिंदगी में बस इसी में तो हम उलझे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब दिल हमें कहाँ पहुँचा देता है, किस इंसान के साथ मिला देता है। लेकिन दोस्तों, इस दिल की भावनाओं में इतना भी मत बह जाइए कि आप एक गलत पर्सन को अपनी जिंदगी में एंट्री दे दें, जिसका पछतावा आप सभी को पूरी जिंदगी भर रहे। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, इंसानों को ढूंढना, किसी खास इंसान को, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम हर किसी को राह चलते अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो बाद में हाथों में फिर पछतावा ही रह जाता है। तो क्यों इस पछतावे के साथ जीना है? और सबसे खास बात, खुद से भी यही वादा कीजिए, खुद से भी एक यही उम्मीद कीजिए कि कभी किसी की जिंदगी में ऐसा पर्सन मत बनिएगा कि किसी इंसान को आपका उनकी जिंदगी में जाने से पछतावा हो, कि काश वो पल ही ना होते या हम ही उस पल वहां ना होते। तो ये सब जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, दिल से जुड़ी बातें हैं। और दोस्तों, खास करके आज का दिन ही बहुत खास है, तो वहाँ भी एक और छोटी सी उम्मीद, छोटी सी आशा, छोटी सी होप पनपती है। उम्मीदों के सहारे कई बार जिंदगी जीने का एक हमें नज़रिया मिल जाता है, टूटते हुए तिनके को सहारा मिल जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ आज के कार्यक्रम में आप सब जानने वाले हैं, आप सभी इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बातें भी ऐसी होती हैं जो हमें खुशी की ओर लेकर जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनोरंजन, गीत संगीत ही हमें खुशियों की ओर लेकर जाते हैं। हमारी ज़िंदगी से बहुत छोटी छोटी सी बातें ऐसी जुड़ी हैं, अगर हम उन्हें गहराई से देखें, गहराई से जानें, तो बहुत अहमियत रखती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, उन्हीं बातों में से कुछ बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। तो उम्मीद है कि ये बातें आप सभी के दिलों तक पहुंचें, आपके दिल को छू कर जाएं। फिलहाल आप सभी को मौसम की ओर लेकर चलते हैं, और इस समय धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय धर्मशाला का तापमान आप सभी महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी धूप खिली हुई है, अगर आंखों देखा हाल आप सभी को बता दूं तो धूप खिली है। और खैर, बारिश का पता नहीं चल रहा है कि कब बारिश आ जा रही है और कब एकदम से मौसम का मिजाज बदल जा रहा है। तो इस बदलते मिजाज के साथ हमें थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा सावधान जरूर रहना है, क्योंकि दिल से दिल तक पहुंचना है तो जिंदगी को भी तो सेफ रखना है, स्वस्थ रखना है और खुद का ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि अभी तो बातें बहुत हैं। और आप सभी तो जानते ही हैं दोस्तों, कि जब भी आप रुचिका के साथ जुड़ते हैं तो बातों की कमी तो बिल्कुल नहीं होती है, और होनी भी नहीं चाहिए, और साथ ही गीत संगीत की भी नहीं होनी चाहिए। तो इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा, खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सो 91.5 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। लेकिन फिलहाल बातों को समय है थोड़ा सा पॉज देने का। जी दोस्तों, 9:20 हो चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि अब बहुत ही खास समय प्रादेशिक समाचारों का है। तो आइए जानते हैं अपने आसपास की कुछ खास जानकारियाँ, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी इन ढेर सारी बातों के साथ।
1: के तहत किसान और बागवान हो रहे लाभान्वित। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली वृद्धा पेंशन में हिस्सेदारी बढ़ाने की केंद्र से की मांग। और प्रदेश में मानसून फिर हुआ सक्रिय, राज्य में वर्षा से बाधित संपर्क सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के मंदिरों में सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत सभी दान पात्र टेम्पर प्रूफ होंगे, उन पर भी यूनिक पहचान नंबर होगा और मल्टी की प्रणाली अपनाई जाएगी। दान पात्र खोलने और चढ़ावे की गिनती जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित समिति की मौजूदगी में होगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को जरूरी किया गया है। निर्देशों के अनुसार मंदिर में चोरी, हेराफेरी या छेड़छाड़ की किसी भी घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और सरकार को देनी होगी। आभूषणों का हर तिमाही में भौतिक सत्यापन और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट मंदिर के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य में एचपी शिवा परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पारंपरिक खेती को आधुनिक लाभकारी बागवानी से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडी जिले के बल उपमंडल का तमरोह क्लस्टर जापानी फल उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इससे किसानों के लिए समृद्धि व रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस क्लस्टर में अब तक कुल 76 बागवान जुड़े हैं और 12 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जापानी फल के 7,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न भाषाओं में उनके गीत पीढ़ियों तक लोकप्रिय रहे हैं और उन्होंने अद्वितीय गरिमा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ हर भावना को अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एस जानकी अम्मा की मधुर धुनें आने वाले वर्षों में भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती रहेंगी। मोदी ने इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, अनगिनत प्रशंसकों और संपूर्ण संगीत जगत के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जनजातीय जिला किन्नौर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों और बागवानों को विभिन्न गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से उच्च तकनीकी पौधशालाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जिले में गुणवत्तापूर्ण फलदार पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे किन्नौर जिला संवाददाता।
2: योजना के अनुसार बड़ी पौधशाला 1 से 2 हेक्टेयर क्षेत्र स्थापित करने वाले किसानों, बागवानों या संस्थानों को 40% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्रति हेक्टेयर 12 लाख तक की सहायता का प्रावधान है, जबकि 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम 24 लाख तक सहायता उपलब्ध होगी। बागवानी विभाग के अनुसार किन्नौर में फल उत्पादन मुख्य रूप से सेब आधारित है और यहाँ के बागवानों की आजीविका बागवानी पर निर्भर है। इससे स्थानीय युवाओं को पौध उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे तथा जिले में आधुनिक एवं वैज्ञानिक बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत उच्च तकनीकी पौधशालाओं का प्रत्यापन करवाना भी आवश्यक होगा। अंतिम किस्त जारी होने के 18 माह के भीतर पौधशाला का प्रत्यापन पूरा करना अनिवार्य रखा गया है। किन्नौर के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में यह योजना बागवानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन में हिस्सेदारी बढ़ाने की केंद्र से मांग की है। इस संबंध में केंद्र सरकार को लिखित में प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र गरीब बुजुर्गों को ₹200 तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 प्रतिमाह प्रदान करती है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पात्र बुजुर्गों को 1,100 और ₹1,700 प्रतिमाह पेंशन दे रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। सिरमौर जिला के कालाअंब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ कल आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत समस्या के समाधान के लिए 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भूजल विभाग द्वारा 20 करोड़ की लागत से चेकडैम लगाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ की जल समस्या में सुधार होगा। उद्योग मंत्री ने उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक में विधायक अजय सोलंकी भी मौजूद रहे। मंडी जिले के बल उपमंडल का तमरोह क्लस्टर अब जापानी फल यानी परसीमन की व्यावसायिक खेती के लिए नई पहचान बना रहा है। HP शिवा परियोजना के तहत यहां करीब 25 हेक्टेयर भूमि में जापानी फल की लोकप्रिय फ्यू किस्म के 15,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे मंडी जिला संवाददाता से।
3: शिवा परियोजना के तहत यहां करीब 25 हेक्टेयर भूमि में जापानी फल की लोकप्रिय फ्यू किस्म के 15,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल 12,500 हेक्टेयर में लगभग 7,500 पौधे रोपे जा चुके हैं, जबकि शेष पौधारोपण शीतकालीन मौसम में किया जाएगा। इस परियोजना से अब तक 76 किसान जुड़ चुके हैं। किसानों को पौधे के साथ ड्रिप सिंचाई, सोलर फेंसिंग, तकनीकी प्रशिक्षण और वैज्ञानिक बागवानी का मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 2 और 3 लाख लीटर क्षमता के जल भंडारण टैंक भी स्थापित किए गए हैं। तमरोह क्लस्टर न केवल जापानी फल उत्पादन का नया केंद्र बन रहा है, बल्कि आधुनिक बागवानी के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस यात्रा का आयोजन हर वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पिछले साल यात्रा के दौरान भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुए मणिमहेश ट्रैक को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार वाया कुकती मार्ग से श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि यहां से प्राचीन परंपरा से आने वाली छड़ी यात्रा को ही अनुमति रहेगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। हालांकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। बीते 48 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में वर्षा से बाधित कई संपर्क सड़क मार्ग, पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कुल्लू जिला में पिन पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में 189 सड़कें बंद है तथा 146 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित और 104 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 जुलाई तक मध्यवर्ती क्षेत्रों में मध्यम और कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को एलोपैथिक के समान वेतन, हाईकोर्ट के आदेश, कहा लाभ से वंचित रखना मनमाना, समानता के सिद्धांत के विपरीत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिमाचल के मंदिरों में चढ़ावे पर और सख्त होगा पहरा। पंजाब केसरी लिखता है, राम मंदिर प्रकरण के बाद मंदिरों की सुरक्षा को लेकर SOP जारी, हिमाचल में मंदिरों में दान की गिनती की होगी वीडियोग्राफी। दैनिक भास्कर की एक खबर है, चमियाणा अस्पताल में 3 Tesla MRI सुविधा शुरू, मरीजों की स्टीक जांच संभव। हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, मॉनसून पर्यटन के लिए हिमाचल पूरी तरह तैयार। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, सांगला में बैली ब्रिज ढहा, शिमला में भूस्खलन, हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, रजहाड़ा में लैंडस्लाइड से गाड़ियां दबी, 14 जुलाई तक येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने राज्य के मंदिरों में बढ़ाई चौकसी, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जारी किए सख्त दिशा निर्देश। जनजातीय जिला किन्नौर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसान और बागवान हो रहे लाभान्वित। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली वृद्धा पेंशन में हिस्सेदारी बढ़ाने की केंद्र से की मांग। और प्रदेश में मॉनसून फिर हुआ सक्रिय, राज्य में वर्षा से बाधित हुए संपर्क सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो सेट से डेली रूटीन के साथ और खास करके अपनों के साथ। ये समय बहुत कीमती है, बहुत ही प्यारा सा है और आज का दिन भी बहुत ही प्यारा सा है। दोस्तों, क्या खास बात है आज के दिन की? एक छोटी सी उम्मीद जो हमें जीना सिखाती है, जो हमें टूटते हुए कई बार सहारा देती है, तो आज का दिन उसी उम्मीद के लिए समर्पित है। जी दोस्तों, आज के दिन आप सभी मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ होप। जिंदगी में जब सब तरफ अंधेरा सा दिखने लगे, तो वो कौन सी छोटी सी किरण है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है? वो छोटी सी किरण, वो उम्मीद है। अक्सर हम सोचते हैं कि उम्मीद तो बस एक भावना है, या तो ये आपके अंदर होती है या नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि विज्ञान क्या कहता है? उम्मीद को सीखा जा सकता है, इसे मापा जा सकता है और ये सचमुच हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो क्यों ना आज के दिन को इस बातचीत के साथ खास बनाया जाए, कुछ लम्हों को प्यारा बनाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जब जिंदगी में आपको भी ऐसा लगे कि हर रास्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक छोटी सी खिड़की खुलती है। कहते हैं ना, भगवान जब सारे रास्ते बंद कर दें तो कोई ना कोई उम्मीद की किरण हमें जरूर दिखाते हैं। तो वही छोटी सी खिड़की हमारी उम्मीद होती है हमारी जिंदगी में, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं। इसी आशा को मनाने के लिए आज का दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम्हारे दिल से अगर आस है तो चल सको तो जरूर चलो। तो सो जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत हमारी भावनाओं को आवाज देता है। सिनेमा और संगीत ने हमेशा हमारी उम्मीदों को जिंदा रखा है। तो अपने इन दिल के तारों को छूते हुए कुछ ऐसे प्यारे प्यारे से गीत जो हमारी उस छोटी सी उम्मीद को जगाए या उम्मीद से जुड़े कुछ प्यारे से बोल आप सभी के दिलों तक पहुंचे। दोस्तों, शुरुआत में ही बात की थी कि ये दिल से दिल तक का सफर, और आइए लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में बातचीत से इस प्यारे से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

0: तो बहुत ही प्यारा सा ये म्यूज़िकल ब्रेक आप सभी ने एंजॉय किया। और सच में ज़िंदगी में जब तक हम हार ना माने, ये आशाओं का सफ़र हमारे साथ बढ़ता रहे, इसी तरह से चलता रहे, तो हम कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानते हैं। और ज़िंदगी का नाम भी यही है, क्योंकि दोस्तों परिस्थितियां तो बहुत सी आती हैं हमारी ज़िंदगी में। कभी बहुत गहरे सी एक कहते हैं ना कि टूटने वाली एक सिचुएशन आ जाती है, तो खुद को संभालना एक उम्मीद के सहारे, क्योंकि हमें एक उम्मीद होती है कि नहीं, इस उम्मीद के लिए हमें जीना है, इस उम्मीद के लिए हमें आगे बढ़ना है। और शायद एक उम्मीद है कि हम सब कर सकते हैं। बस ये बातें अपने साथ अगर हम लेकर चलें तो ज़िंदगी में हार नामुमकिन है। जी दोस्तों, ये तो खैर ज़िंदगी से जुड़ी बातें हैं, उम्मीदों से जुड़ी बातें हैं, क्योंकि उम्मीदें तो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ ख़ास जानकारियाँ भी हमारी ज़िंदगी में उतनी ही अहमियत रखती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक बहुत ही ख़ास जानकारी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीते लंबे अरसे से स्कूलों में बिना टेट पास कर सेवाएं दे रहे शिक्षकों को एक वर्ष में टेट क्लियर करने के लिए 3 मौके मिलेंगे। स्कूलों में शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य किया गया है, और ऐसे में न्यायालय के आदेशों के बाद शिक्षकों को टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टेट पास करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 तय कर दी है। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से कार्यरत शिक्षकों के लिए साल में 3 बार टेट परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश भी की है। जी दोस्तों, तो ये जानकारी उन शिक्षकों के लिए है जो कि अपनी सेवाएँ जो है वो स्कूल में दे रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है या पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ये कह सकते हैं, तो जिन्होंने टेट की परीक्षा को पास नहीं किया है और वो सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में अब तो खैर सिचुएशन चेंज है, अब तो हालात चेंज है कि बिना टेट पास किए किसी को मतलब कि अलाउ ही नहीं किया जाता है। तो अभी भी वही निर्देश जो है वो सभी के लिए हैं, जो सेवाएँ दे रहे हैं पहले से ही, उनके लिए भी ये रूल जो है वो फॉलो करना ज़रूरी रहेगा। तो 2028 तक जो है वो समय सीमा निर्धारित की गई है, तो तब तक साल में 3 बार शिक्षक जो हैं वो अपने इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, यानी कि टेट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा तो वो रहे ही हैं, तो मेहनत तो वो कर ही रहे हैं एक साइड भी दूसरे साइड भी, तो थोड़ा सा उन्हें अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए, आप सभी तक पहुंचाई गई है गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के माध्यम से। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।
1: Class have the following parts: calyx,

91 दशमल ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही यादगार सा रहता है। दोस्तों, कहते हैं जीवन के हर मोड़ पर हमें एक बात हमेशा याद रखना बेहद जरूरी है। कौन सी बात है? अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना हक वहीं जताना चाहिए जहां हमारे शब्दों की गरिमा हो और हमारी भावनाओं की सच्ची कद्र की जाए। क्योंकि जो लोग आपकी खामोशी को नहीं समझ सकते, वो आपके शब्दों की कीमत कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, बेरुखी के दरिया में अपना अधिकार जताना पत्थर पर पानी डालने जैसा है, जो केवल आपका मान घटाता है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपको प्राथमिकता दें और आपके अस्तित्व का सम्मान करें, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप अगर कहीं भी जाएं, किसी के साथ भी, किसी भी रिश्ते में रहें, अपनी जिंदगी में ही रहें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ध्यान में रखें। और आज के कार्यक्रम में हम बेहद बहुत ही खास बात कर रहे हैं दोस्तों, उम्मीद। उम्मीद शब्द छोटा सा है, लेकिन हमारी जिंदगी में उसकी अहमियत, उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी कहानी कि दोस्तों, कहते हैं ना कि उम्मीद का दिया जलता रहे तो शायद हम जिंदगी में बेखौफ होकर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो उम्मीद का दिया जल रहा है। एक बार एक कमरे में 4 मोमबत्तियां चल रही थी। पहली मोमबत्ती ने कहा कि मैं शांति हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत अराजकता है, मैं अब और नहीं जल सकती, और वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती

वहां प्यार की क्या कद्र, इसलिए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तभी उस कमरे में एक छोटा सा बच्चा आया। तीन बुझी मोमबत्तियों को देखकर वो रोने लगा। तब चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और बोली कि घबराओ मत बच्चे, मैं आशा हूँ, होप हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लौ से बाकी की तीन मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हो। तो दोस्तों, इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से कितनी बड़ी उम्मीद हमारे सामने, हमारे दिलों तक पहुंच गई। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों कि ये बातें आप अपनी जिंदगी से रिलेट कर सकें, क्योंकि उम्मीद जो है हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है, बहुत अनुभव भी देती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया है, कुछ नजर नहीं आता, सब अपने साथ छोड़ देते हैं, सब रिश्ते नाते पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज, अंदर से एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगते हुए दिखाई देती है। जहां हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, वहां उस उम्मीद के सहारे हम जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने उसी उम्मीद को जगाया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कहीं टूट रहे हैं, कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसी उम्मीद होगी जिसकी, जिस उम्मीद के सहारे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें, इस राह को अपना सकें और बेहतर बना सकें। तो फिलहाल हमें तो अपने कार्यक्रम में अपनी इस राह को प्यारा बनाना है, खूबसूरत बनाना है और साथ ही मीठा बनाना है। तो मीठा इन प्यारे प्यारे से, मीठे मीठे से गीतों के साथ। तो आइए दोस्तों, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों, जिंदगी में हर कदम पे एक नया पड़ाव, एक नई चुनौती, एक नई परीक्षा हम सभी का इंतजार कर रही होती है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें उस हिम्मत और जुनून के साथ, उस उम्मीद के साथ सिर्फ आगे की ओर बढ़ते रहना है, जिस तरह से हम कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है इस समय 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों डे ऑफ होप तो आज के दिन आप सभी सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आप सभी मना रहे हैं पेपर बैग डे और इसी के साथ नेशनल सिंप्लिसिटी डे। तो बहुत ही खास बातें हैं ना दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खास बातें जो कि हमारी डेली रूटीन से जुड़ी, हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत ही खासियत से। तो बिल्कुल दोस्तों, इन खासियतों को ध्यान में रखते हुए और इसी उम्मीद के सहारे, क्योंकि उम्मीद की ही बात कर रहे हैं, होप की ही बात कर रहे हैं, तो जहाँ उम्मीद होती है वहाँ जिंदगी होती है, जहाँ उम्मीद ही नहीं है तो वहाँ रिश्तों को भी हम नहीं बांध कर रख सकते, है ना। क्योंकि रिश्तों की हम बात करें तो रिश्तों में भी एक, कई बार हम बोलते हैं नहीं, शायद एक उम्मीद होती है कि एक न एक दिन ये रिश्ते संभल जाएं, कि आशा करते हैं कि हमारी जो भी रिश्तों के बीच में मनमुटाव या जो भी परेशानियां चल रही हैं वो शायद एक दिन ठीक हो जाए, सब बेटर हो जाए और फिर एक नया रूप दिया जाए। लेकिन वो उम्मीद अगर ख़त्म हो जाए, वो उम्मीद टूटती हुई नज़र आए और जिस रिश्ते में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो वहाँ तो फिर हमें बैक जो है स्टेप ले ही लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जहाँ आपकी कदर नहीं है, जहाँ आपकी इज्जत नहीं की जाती, आपकी भावनाओं को नहीं समझा जाता, वहाँ पे आप कुछ मत बोलिए। और इंसान अक्सर जिंदगी में जब गलत रास्तों की ओर बढ़ते हैं तो सब भूल जाते हैं, सिर्फ गलत उनके दिमाग में रह जाता है। तो ये उम्मीद भी होती है दोस्तों कि उस गलत का जवाब उन्हें ज़रूर मिलेगा। इसी उम्मीद के सहारे हम चुपचाप जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ज़रूर दोस्तों आपको भी ज़िंदगी में कुछ प्यारे अनुभवों, कुछ प्यारी सी सीख के साथ जो है आगे बढ़ते रहना है। तो आइए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आइए इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और बहुत ही खास आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों बातचीत के इस सफर के साथ कुछ खास जानकारियां जो कि हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। देशभर के छात्रों में बढ़ते मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुखदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य क्रिमिनल अपील संख्या 3177 या 2025 मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये नई अंतरिम व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, रेजिडेंशियल अकादमियों और निजी कोचिंग सेंटरों समेत सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगी। सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को साल में कम 2 बार मनोवैज्ञानिक फर्स्ट एड और चेतावनी संकेतों की पहचान के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी दोस्तों, आज के इस समय में जिस तरह से हम अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हर एक फैसिलिटी होने से हमारा जो ये लाइफस्टाइल है वो बढ़िया से हो जाएगा। पैसों की जो मांग रहती है, पैसों की जो हमारी आंखों पे लालच रहता है, उसके चलते हम बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसी के चलते स्कूल में आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चे सिर्फ अपने गांव के आसपास स्कूलों में ही नहीं जाते हैं, उससे बाहर निकलकर देश विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं, अपने शहर से बाहर निकलते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। क्योंकि कहा जाता है ना दोस्तों कि अपने दम पे अपनी पहचान बनाकर जो इंसान आगे बढ़ता है वो वाकई में इतिहास बनाता है, और इतिहास में वही लोग आते हैं जो मेहनत करते हैं, जुनून कर दिखाते हैं। लेकिन वहीं बीच में कहीं अगर बच्चों को इस तरह से सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं, कहीं बच्चों को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, या फिर वो जो स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फैमिली सिचुएशन से लेकर हो, कई बार फैमिली माहौल वैसा होता है कि बच्चे सोचते रहते हैं वो कुछ कह नहीं पाते। कहते ना माँ बाप की आपसी नोक झोंक का असर जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी में देखने को मिलता है, और बच्चे ना माँ बाप से कुछ कह पाते हैं न किसी और से कुछ कह पाते, क्योंकि घर की बातें हैं और घर की बातें बाहर तो फिर बवाल हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे को दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं और वो बातें कब स्ट्रेस का रूप ले लेती हैं, कब तनाव में चले जाते हैं, कब वो अपने आप को अकेलेपन की ओर लेकर चले जाते हैं। और जब एक बच्चा अकेलेपन की ओर बढ़ गया तो फिर उसे एक ही उम्मीद दिखाई देती है, जो लोग अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए रास्ते अपनाते हैं, तो वो भी उसी रास्ते की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बच्चे की उम्मीद कहीं और भटकती है और माँ बाप की उम्मीदें फिर ये झलकती हैं कि काश समय रहते चीज़ों को संभाल लिया होता। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बात भी बहुत खास कर रहे हैं, क्योंकि डे ऑफ होप जो है आज आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उम्मीदें हमें ज़िंदगी में एक बहुत बड़े मुकाम तक लेकर जाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। तो इन सीख से हमें ज़िंदगी के सबक जो है वो समय रहते ले लेने चाहिए। तो बच्चों की ज़िंदगी बहुत नाजुक मोड़ पे होती है, अगर हम समय रहते ना समझें तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो खैर दोस्तों, ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं और एक एक करके उन पे अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक एक बात भी अगर हम थोड़ा गहराई से देखें, गहराई से जानें और उस पहलू तक जाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आइए दोस्तों, बातचीत हम ज़रूर करेंगे, जानेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले फिर से एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।
आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

91 में लव 2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास बातचीत आज के इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिए हमेशा जिंदगी में कि उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि जीवन जीने की सबसे सुंदर सी वजह है और ये वजह हमें जीना सिखाती है, जीने की भी उम्मीद देती है। तभी तो दोस्तों कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके को सहारा या टूटते हुए हमारे दिल को सहारा, इन उम्मीदों के सहारे, इसी के सहारे जो है हम जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम भी हासिल करते हैं और कई बार उम्मीदें हमें गलत रास्तों की ओर भी लेकर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सही राह की ओर लेकर जाती हैं, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं ना दोस्तों, हमारी जो आशाएं हैं वो एक्सट्रीम लेवल तक होती हैं। कई बार तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन होने लगे तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब लिमिट से ज़्यादा चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एंटर होती हैं तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही तो आती हैं, मुश्किलें ही बढ़ जाती हैं और उसी के सहारे फिर हम प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, फिर समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो कोई भी चीज़ है दोस्तों, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, लेकिन हाँ उसके दो पहलू ज़रूर रहते हैं, एक सही रास्ता एक बुरा रास्ता, गलत मतलब कि गलत राह की ओर लेकर जाने वाला। तो ये डिसाइड हमें करना होगा कि हमें ज़िंदगी में किस और आगे बढ़ना है, किस और जाना है, किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है जिनकी वजह से ये उम्मीदें हमारी बनी रहें, ना कि टूटें, ना कि बिखरें और ना हमें तोड़ें, क्योंकि हम टूट गए तो ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। इसी के साथ एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, और बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में हम सभी कर रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी भी आप सभी मना रहे हैं, सभी पूरी फैमिली के साथ ये जो समय है इसे खास बना रहे हैं। तो होप ऑफ द डे, क्योंकि उम्मीद रहती है पूरे परिवार को। जो पर्सन फुल वीक बाहर रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, या फिर कुछ बहुत लंबे समय के लिए अपने आप को बिजी रखते हैं, तो उन्हें भी ये उम्मीद रहती है कि एक दिन हम सभी एक साथ बैठकर कुछ समय जो है वो व्यतीत करेंगे अपनों का साथ। उस उम्मीद के सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी उन दिनों को गिनते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ आज के दिन और भी कुछ खास बात आप सभी मना रहे हैं, पेपर बैग डे। दोस्तों, पेपर बैग डे की हम बात करें, दिवस की हम बात करें, तो ये भी बहुत खास है, क्योंकि ये भी हमारी प्रकृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो कि हम कुछ समय के लिए यूज में लेकर तो जरूर आते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब तक कोई पीछे से हमें वो ना करे, बताए ना, बोले ना, डंडा लेके खड़ा ना हो, तब तक हम किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो हर साल 12 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड पेपर बैग डे जो है वो मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन। इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक बैग की जगह पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जगह जगह प्लास्टिक की थैलियों के ढेर लगे रहते हैं, और हमारी गाय भी उन्हें खाती हैं। ऐसे में कई गाय और जानवरों की मौत भी हो जाती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड प्लास्टिक दिवस बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में ये दिन पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। तो दोस्तों, सिर्फ एनवायरनमेंट डे ही नहीं हमें प्रकृति की ओर प्रेरित करता है, और भी बहुत खास खास से ऐसे दिवस होते हैं, खास दिन होते हैं, जो कि हमें या हमारे रुख को, हमारी जिंदगी के रुख को, हमारे नजरिए को पर्यावरण की ओर अग्रसर करते हैं। तो हम जो भी कोई भी स्नैक्स खा रहे हैं या कोई भी चीज़ें ले रहे हैं, मैक्सिमम हम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। यूज़ करके हम उसे फेंक देते हैं बाहर, कहीं ढेर लगा देते हैं। और आजकल आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आवारा पशु न जाने कितने ही हमें देखने को मिलते हैं, तो वो बेजुबान बोल तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ, वो उस ढेर में से उस प्लास्टिक को कई बार खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भूख तो हर किसी को लगती है, दो वक्त की रोटी के लिए कौन क्या क्या नहीं करता। तो उसी में हमारे ये पशु जानवर जो नहीं कह पाते हैं, अपने दिल का दर्द बयां नहीं कर पाते, तो न जाने कितने पशुओं की जो है वो इस प्लास्टिक की वजह से मौत हो जाती है। और बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात में वो प्लास्टिक यहाँ वहाँ नदी नालों में जब फंस जाता है, तो नदी या नालों का पानी जो है वो रुक जाता है, बहाव रुक जाता है, और वो पानी की डायरेक्शन बदल कर घरों की ओर आ जाती है। तभी तो कहते हैं बरसात से पहले अपने आसपास की पूरी सफाई जो है वो हमें कर लेनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, सिर्फ अपने घर के आगे पीछे कर ली तो बहुत हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, समाज भी अपना है, देश भी अपना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सभी की अपनी है। तो पर्यावरण को संरक्षित करके अगर रखना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी उम्मीद, होप डे आज के दिन आप सभी मना रहे हैं, तो इसी उम्मीद से कि एक दिन आने वाला समय जो है
वो प्लास्टिक फ्री जो है वो हो सकता है जब हम पेपर बैग का यूज़ करेंगे, हम खुद को जागरूक करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे। तो और भी ढेर सारी बातें हम ज़रूर करेंगे। क्यों मनाया जाता है, कब से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों उम्मीद जब थक जाए कदम और मंजिल धुंधली से लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दें और हर राह अनजानी से लगे, तब एक छोटी सी किरण दिल के किसी कोने से कहती है कि रुको मत, अभी सफर बाकी है, अभी सूरज उगना बाकी है। उम्मीद वो दीपक है जो आंधियों से नहीं डरता, बार बार बुझकर भी फिर से जलना जानता है। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बहार आती है, और हर मुश्किल के बाद नई उम्मीद जरूर आती है। दोस्तों उम्मीद वो शक्ति है जो हमें वहां भी आगे बढ़ने का साहस देती है जहां रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। एक छोटे से गांव में एक बूढ़े माली

ने एक पौधा लगाया। लोग हंसते थे कि इतनी सूखी जमीन में ये पौधा कभी नहीं बचेगा। लेकिन माली रोज उसे पानी देते, उससे बातें करता और कहता कि मुझे भरोसा है, एक दिन तुम बहुत बड़ा पेड़ बनोगे। सालों बीत गए, धीरे धीरे वही पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। आज उसकी छाया में पूरा गांव आराम करता है। तो इस कहानी की सीख यही है दोस्तों, कि कभी कभी दुनिया को नहीं, बस खुद को अपनी उम्मीद पर विश्वास दिलाना बेहद जरूरी है। उम्मीद कभी छोटी नहीं होती, बस हमारा विश्वास छोटा पड़ जाता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे चुनौती देने के लिए काफी होता है। हार केवल वही मानता है जिसने उम्मीद छोड़ दी हो। उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। तो हमें जिंदगी में कभी भी रुकना नहीं है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, दोस्तों मुश्किलों से जुड़ा ये जीवन है, और अगर मुश्किलें ना हो तो जीवन अधूरा है। लेकिन ये मुश्किलें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, एक नई उम्मीद देकर जाती हैं। तो आइए इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि आप सभी भी उम्मीद कर रहे हैं एक प्यारे से गीत की, तो आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारी सी आशा के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, छोटी सी उम्मीद के साथ, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये उम्मीद कि आने वाले समय में शायद समय सही हो जाए, जो नशा एक आग की तरह फैल रहा है, ये उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इससे हमें छुटकारा मिल सके। एक उम्मीद कि समाज में जो ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जो ये एक तरह से पाप बढ़ता जा रहा है, इसका अंत होगा। हर एक चीज उम्मीद के सहारे, और ये उम्मीद इसी के सहारे हमारी जिंदगी। खैर दोस्तों, ये तो उम्मीदों के सहारे हैं, लेकिन आइए इसी के साथ जानकारियों की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, हाथ धोने की आदत और साफ सफाई के प्रति व्यावहारिक जागरूकता विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में 23 अप्रैल को आयोजित बैठक के निर्णयों के आधार पर स्कूल निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए कि वॉश यानी कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जल स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई से जुड़े घटकों को विद्यालय गतिविधियों और पाठ्यक्रम के साथ प्रभावी रूप से जोड़ा जाए। और सचमुच दोस्तों, मैं एक बात आप सभी के साथ साझा भी करना चाहूंगी कि अक्सर हम स्वच्छता की बात करें तो हम खुद ही ध्यान नहीं रखते हैं, खास करके हम किसी एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ध्यान दिया जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जाता है। तो वहाँ चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे एम्प्लॉय हों, चाहे कोई भी हो, वो हर एक बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन वहीं बात अगर हम सरकारी संपत्ति की करें, गवर्नमेंट से जुड़ी किसी भी बात की बात करें, तो अक्सर क्या देखते हैं हम, मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो हम साफ़ सफाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ अपने घरों में ज़्यादातर ध्यान देते हैं और घर से बाहर हम ये बोलते हैं ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये जिसका काम है ये वो करेंगे, वही जाने वही संभाले। किस चीज़ की बात कर रही हूँ दोस्तों? खास करके आपने देखा होगा स्कूल्स में या मतलब कि कॉलेजेस में हम टॉयलेट्स की बात करें तो हम ये, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप वहाँ पे जाके सफाई करें, वहाँ पे जाके जो है वो मानते हैं वहाँ सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका काम होता है काम करना, लेकिन हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वहाँ पे गंद फैला के आ जाएं, हम रैपर्स वहाँ फेंक के चले आते हैं, खास करके लड़कियाँ जानती हैं और उन्हें किस तरह से जो है चीज़ें कैसे, मतलब कि डस्टबिन होते हैं लेकिन डस्टबिन में नहीं, यहाँ वहाँ चीज़ें फेंकनी हैं, पूरे वॉशरूम में वो चीज़ें फैलाई होती हैं, तो गंद हम खुद फैलाते हैं और फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये सफाई नहीं करते हैं, यहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं हैं। चाहे वहाँ पे कितनी भी आप एक अच्छी

कि आप वहाँ पे गंद फैला के आओ, और वो वहाँ के सफाई कर्मचारियों की रिस्पांसिबिलिटी की वो उठाते रहें, वो उठाते हैं, ऐसा नहीं है, वो साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन हर वक्त वो साफ़ सफाई करें ये नहीं हो पाता है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी हम चाहते हैं, जब भी हम यूज़ करते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये बातें हैं जो कि हम आम अपने आसपास देखते हैं, जानते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। तो यही उम्मीद करती हूँ दोस्तों, उम्मीद की ही बात आज के कार्यक्रम में कर रहे हैं, और आप सभी से भी यही उम्मीद करूंगी कि आगे से अगर आप कहीं जाएं, चाहे हॉस्पिटल में जाएं, चाहे आप कॉलेज में जाएं, चाहे आप स्कूल में जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, किसी के घर ही क्यों ना जाएं, क्योंकि कुछ लोग वैसा भी करते हैं, अपने घर में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन किसी के घर जाते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वहाँ वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझ के वहाँ भी नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसा ना करें, इंसानियत होने के नाते आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने घर पे हैं वो बाहर भी हैं, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे थे दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से सफर को बहुत ही प्यारी सी उम्मीद के साथ आप सभी ने एंजॉय किया, इसी उम्मीद के साथ कि इंटरेस्ट और ये प्यार इसी तरह से बना रहेगा, है ना। तो यही सोच रहे थे आप सभी, बिल्कुल दोस्तों। तो यही सोचते देखिए समय 11 बजे के आसपास पहुंच गया और पता ही नहीं चला। तो यही तो समय का खेल है और जिंदगी का और उम्मीदों का, न जाने कब कहां से कहां पहुंचा देता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं यही उम्मीद करती हूं आपसे दोस्तों की जिंदगी में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी आपके दायित्व हैं, क्योंकि आज हमने बात की होप डे की और साथ ही बात की हमने पेपर बैग डे की। सिंप्लिसिटी डे भी आज के दिन आप सभी मना रहे हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी खैर आप सभी जानते भी बहुत अच्छे से हैं, लेकिन दोस्तों पेपर बैग डे की बात करें तो एनवायरनमेंट को साफ स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य हर दिन एक उद्देश्य से ही मनाया जाता है, जागरूकता से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, उस बात के लिए प्रेरित किया जा सके, अंतरात्मा उनकी बोल उठे कि नहीं हमें आज से ही शुरू करना है, सिर्फ किसी दिन का इंतज़ार नहीं करना है, सेलिब्रेशन का इंतज़ार नहीं करना है, हम तैयार हैं तो हर चीज़ तैयार है। तो जी दोस्तों, जिंदगी भी अपनी है, समाज भी अपना है, देश भी अपना है और साथ ही ये प्रकृति भी अपनी है। तो अगर आज इसे बचाएंगे तो कल आने वाला समय इसी उम्मीद के साथ कि अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, सांस लेने लायक होगा। तो आइए इसी के साथ दोस्तों दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई उम्मीदों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन

0: रन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे
3: तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ।
2: अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट,
0: टेस्ट।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
1: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, हाँ? आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
4: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
5: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: कल मैं घर पे अकेली थी ना, मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
6: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
7: कौन है ये लोग?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: चल कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चले?
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: पटेल, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, हाँ? आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसकी सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज मैंने सोचा क्यों ना बॉलीवुड में खूबसूरती को सेलिब्रेट किया जाए। अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरती की प्रतिमा किसी को मानते हैं तो दैट हैज टू बी जीना तमान जी। वही है वो जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस को देखे जाने का नजरिया बदल दिया। वही है वो जो कि हिप्पी रोल करें या गांव की लड़की का रोल करें, मॉडल बने या माँ बने, हर तरह से हमेशा चाही गई है। वही है वो जो कि एक सेक्स आइकॉन बनकर के सामने आई लेकिन फिर भी कभी वल्गर नहीं लगी, हमेशा हॉट एंड ब्यूटीफुल ही लगी, हमारी जीना तमान जी। लेकिन आपको पता है 80 के दशक की शुरुआत में जीना तमान जी इंडिया छोड़ के बॉलीवुड छोड़ के चले जाना चाहती थी। कौन थे वो जिनके कहने पर जीना तमान जी पीछे रुक गई, बताऊंगी आपको उनका नाम कुछ ही देर के बाद। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गानों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दम मारो दम फिल्म से गाना सुनिए जरा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। जीना दमान स्पेशल है आज का ये एपिसोड। और 1976 से लेकर के 1980 के बीच में जीना दमान जी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हुआ करती थी बॉलीवुड में। हेमा मालिनी जी अपने टॉप पे थी, लेकिन फिर भी जीना दमान जी हेमा मालिनी जी से भी ज्यादा पैसे कमाती थी। इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद जीना दमान जी का दिल नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, ना इस देश में, ना यहाँ के काम में, ना यहाँ के लोगों में। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो सब अपना यहाँ का काम समेट के बोरिया बिस्तर उठा के जर्मनी चली, जहां पर उनकी माँ रहा करती थी। उनका डिसीजन पक्का था, फाइनल था, शिफ्टिंग की डेट आ गई थी, जब देवानंद साहब आए और आके उन्होंने कहा जीना दमान जी से कि ऐसे आप कैसे छोड़ के जाएंगी, बॉलीवुड में एक ही तो डीवा है, वो भी चली गई तो हम देवियों के साथ में क्या खाक कुछ मजे कर पाएंगे। ये बात सुन के जीना दमान जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और जीना दमान जी ने कहा कि चलो तुम्हारी इस बात की खातिर एक और साल रुक जाती हूँ। और उस एक साल ने इतना कमाल किया जीना दमान जी की जिंदगी में कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रच बस गई। तो उन्हीं के नाम डॉन फिल्म से बजाते हैं अगला गाना, जिसका आपको था इंतजार। सुनिए जरा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज जो ना सिर्फ जीनत अमान जी की रही है बल्कि बॉलीवुड की रही है, वो थी सत्यम शिवम सुंदरम। एक ऐसे समय पर आई थी वो मूवी जब हमारी ऑडियंस जो थी, जनता जो थी, वो इतनी ओपन माइंडेड हुई नहीं थी कि इतनी बोल्ड मूवी को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन फिर भी जीनत अमान जी के अंदर उतना जिगरा था कि वो ये मूवी कर पाए। आपको एक खास बात बताती हूँ, इस फिल्म की कास्टिंग चल रही थी जब जीनत अमान जी का नाम सामने आया था। जीनत अमान जी को बड़ी एक्साइटिंग लगी थी ये मूवी, उनको लगा कि ये मूवी तो मुझे करना ही है। तो पूरी के पूरी से साम दाम दंड भेद लगा के, पूरा दम लगा के उन्होंने तैयारी की थी इसके ऑडिशन की। राज कपूर जी के ऑफिस पहुंची है अपना स्क्रीन टेस्ट देने के लिए। मजे की बात यह है कि जहां पर बाकी सारी एक्ट्रेसेस नॉर्मली आई थी, बन ठन के आई थी, जीनत अमान जी एक गांव की लड़की की तरह लहंगा चोली पहन करके ऑडिशन के लिए पहुंची थी। यही नहीं, उन्होंने मेकअप भी कुछ इस तरह का किया था कि जैसे कैरेक्टर की जरूरत थी, उनका आधा चेहरा जला हुआ सा लग रहा था। देख करके जीनत अमान जी की मेहनत को राज कपूर जी बड़ा इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि हीरोइन तो मेरी यही बनेगी, और ऐसा ही हुआ। इसी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से सुना रही हूं आपको अगला गाना। और अगर आपको लगता था कि जीनत अमान जी सिर्फ एक फिल्मों की एक्ट्रेस रही हैं, मूवीज में आई हैं, तो आप गलत हैं। टेलीविजन पे भी इन्होंने कुछ काम किया है, बात करेंगे उसके बारे में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर यह है जीनत अमान स्पेशल एपिसोड। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज की तारीख में अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे तो एक अलग ही ट्रेंड है फैशन डिजाइनर्स का। अगर डिजाइनर कपड़े नहीं पहने हैं तो मतलब आप बड़े सितारे बने ही नहीं हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस ट्रेंड की शुरुआत भी की थी जीनत अमान जी ने। इसके पहले ये कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, किसके बनाए हुए कपड़े पहने हैं। लेकिन जीनत अमान जी क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल की स्टार मानती थी खुद को, तो ये इंटरनेशनल डिजाइनर्स से अपने कपड़े बनवाया करती थी। फैशन अलग लेवल का था इनका। साड़ी छोड़ बिकिनी पहनना, वो भी स्क्रीन पर इन्होंने शुरू किया। बड़े बड़े बन छोड़ बॉब कट करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ में एक्टिंग करना इन्होंने शुरू किया। यहां तक कि क्या आपको पता है जीनत अमान जी वो पहली हिंदी फिल्म एक्ट्रेस रही जिनके खुद के नाम पर एक परफ्यूम भी लॉन्च हुआ था। जितनी महक उस परफ्यूम में रही होगी उतनी ही महक इनके गानों में भी है। तो चलिए अगला गाना सुनाते हैं आपको, खतूबा, अली बाबा और 40 चोर फिल्म से आशा भोसले जी की आवाज में। सुनिए।

क्राइम क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। जीना तमान जी की जिंदगी प्रोफेशनली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना रही हो, दमदार क्यों ना रही हो, पर्सनली जीना तमान जी ने बहुत कुछ झेला। फिजिकल अब्यूज हो, डिस्टर्ब्ड मैरिजेस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, सभी कुछ उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और बहुत बुरा हिस्सा बन के रह गया। लेकिन इतने सारे हार्डशिप्स झेलने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनफैक्ट उन्होंने दूसरों की मदद करने का सोचा और तभी जीना तमान जी ने एक टेलीविजन शो की शुरुआत की थी। 80s की ही बात कर रही हूँ, लेट 80s अर्ली 90s में टेलीविजन पे उनका एक शो आया करता था जिसका नाम था आवाज। और यहाँ पे वो चाहती थी कि कुछ ऐसी औरतें जिन्हें आवाज उठाने की जरूरत है वो आएं और आकर के आवाज उठाएं। उन्हें हमेशा ये दर्द, ये मलाल रह गया कि जब उन्हें जरूरत थी तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। इसीलिए कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको की जरूरत थी मदद की, उनकी जीना तमान जी ने दिल खोल के मदद की। मुझे लगता है कि अपनी परेशानियों को दूर करने का बस एक ही तरीका होता है कि दूसरों की परेशानियों को दूर किया जाए। शायद जीना इसी का नाम है। इसी के नाम सुनाते हैं आपको अगला गाना, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में जीना तमान जी की फिल्म हीरा पन्ना से पन्ना की तमन्ना है।

0: इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए कि कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: करण कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर होगी।
3: मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए।
2: थैंक यू।
0: क्या हुआ, ये सब क्या है?
3: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सबका कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, अब खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है ये लोग?

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया है पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 MHz ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला के नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां थोड़ी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तो तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम इंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

95.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल एक होर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हैं तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: कल कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चले?
2: थोड़ी देर हुई।
3: मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए।
2: थैंक यू।
0: क्या हुआ, ये सब क्या है?
3: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट,
0: टेस्ट।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सबका कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा हा? आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है ये लोग?

0: कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक दर्शतों माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। दर्शकों तुम सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा कामकार है से जरूर करा दे होने न, क्योंकि रोजाने दा जेड़ा कामकार है से अहां दा चलिया रहंदा कने अपनी जेड़ा सेहत है सेहत दा भी जरूर जेड़ा ख्याल है से तुहां रखा दे होने न। कने तुहां सारे जो इंतजार रहंदा है कि कालू दिया दो बजदे न कने कालू दिया तुहां सारी इस माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ते न। दर्शकों सफर दी जेड़ा समय दी जेड़ा सुई थी या से मुझे लगा था 2:03 पर पुजी हो है या 3 मिनट जेड़ा न कार्यक्रम च होइया न कन्ने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी चुके होने न। इसी कन्ने तुह तक नंबर जेड़ा है सभी पहुँचाइंदे न, क्योंकि नंबर तुह तक पुजा होगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। तो श्रोताओ नंबर है 7011817091। तो जरूर इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो तुह नंबर जेड़ा है से नोट करी लिया होना है कने अपनी गलबात कन्ने अहां जरूर अहां दे जेड़ा पहले श्रोता अहां कन्ने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कन्ने गलबात से कुत्थू ते बोला दें कन्ने तिना दा नां क्या है। हेलो हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी मैडम? बढ़िया
0: जी। तुह कुत्थू ते बोला दी कने तुहां दा नां की है जी?
1: मैं सलवाड़ी से बोला जी, अशोक कुमार
0: जी। अशोक जी, क्या कामकार तुहां लग गया, क्या करा दे आज?
1: काम कार के मन में दस्ताद लगी बैठी जो सब कर ना
0: जी जी। और नोई ताजी?
1: बस पुरानी मन में क्या था, बरसात लगी है
0: जी। बरसात लगी हो पर तुहें क्या लगदा बरसात दे मौसम चाहे अपना चेड़ा ख्याल है से किस तरीके ने रखना चाहिए था?
1: ख्याल रखना बड़ी जरूरी है मैंने
0: जी, सबसे ज्यादा जरूरी जी।
1: हां जी, आजकल को करना कोई क्या कुछ क्या जी बड़े आजकल
0: जी जी
1: जी अपने सेहत जो ध्यान रखना खुद भी बंदा रखा है
0: जी जी। छोटी दी लापरवाही जेड़ा है सियाह जो कुथी ना कुथी बड़ा ज्यादा नुकसान दे करी जांदी ना जी। हर दिन हाँ कोई ना कोई न्यूज़ जरूर सुनते न कि फलानिया जगह हुई है फलानिया जगह हुई है कने कारण क्या होंगे बरसात का ही फिसल ज़्यादा होंगी या हाँ कोई भी काम करा देन बच्चों की गल करिए बच्चों कने भी कुथी ना कुथी कुछ ना कुछ हादसे जड़ा ना से आते रहते ना जी। जी जी जी। ता अशोक जी आज तुह कुंदिया गीत जेड़ा है से सुनना पसंद करके
1: मैं बलन सुना जी इस बार मेरी जिंदगी फकीरां दी
0: जी। मेरी जिंदगी फकीरां दी ना जी जी। जरूर ये भजन तुह तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: जी। अगले जेड़ा श्रोता ना तिना कन्ने भी कर देन गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: धन्यवाद मैडम जी। ठीक ठाक मैडम जी, असा था तुसा ठीक ठाक मैडम जी?
0: जी यहां भी ठीक ठाक है जी।
2: चलो ठीक ठाक ही रहना चाहिए मैडम जी।
0: जी ठीक ठाक होना जरूरी है ना जी, सेहत
2: जरूरी है मैडम।
0: सेहत ठीक है तो सारे काम ठीक है ना जी।
2: हां जी, तो गल सही बोली मैडम जी।
0: जी तो तुह कुछ दी रहने वाले न कने अपना जेड़ा नाम है सभी जरूर दसी दिया जी।
2: मेरा नाम है मैडम जी सुनील कुमार, कोठियां जलोट दे रहने आने मैडम जी।
0: जी कोठियां जलोटे रेगुलर श्रोता है ना जी।
2: मैडम
0: जी जी
2: जी,
0: जी
2: हाँ जी,
0: ता तो हाँ
2: बाकी
0: इस
2: तो हाँ बरसाती की गल आई है, कहीं ख्याल
0: जी
2: रखना मैडम जी।
0: जी
2: हाँ जी, बाकी तो मैडम ये जिंया अजकल बरखा बुरखा हो आई है मैडम जी, जिंया मतलब
0: जी
2: अंगन उंगन मतलब चीफले हो जाते मैडम जी, तो
0: जी
2: थोड़ी
0: जी
2: संभली के जाना। कई बार यहाँ क्या करेंगे मैडम, बच्चे तो चलो खिट दे दे, बड़े भी खिट दे दे, मैंने कई बार ऐसे पैस के बताना नुकसान अपना ही होता मैडम जी।
0: जी जी
2: हाँ जी,
0: जी
2: और
0: ता
2: दूजी गल क्या मैडम जी, जिंया हूँ पट्टियां जाते मैडम जी यहाँ, तो
0: जी
2: गाय
0: जी
2: गुए भी बढ़ दे, गाय भी
0: जी
2: बढ़ दे, तो पहले मैडम जी डंडे ना मतलब दिखी ले कोई ऐसी चीज तानी बैठी है मैडम जी।
0: जी जी
2: हाँ जी, कई बार ऐसा होता ना कि मतलब बैठ ही होंगे ना, हाथ सिरे शिकार हो जाते मैडम जी फिर। हाँ
0: जी
2: जी
0: क्योंकि
2: मैडम,
0: वहाँ कोई भी है, चाहे ऐसा कुछ भी हो सकता ना जी। उस जो तो नहीं है
2: हाँ जी,
0: पता
2: क्या
0: कि आहाँ जो भी नहीं है पता कि आगे क्या हुआ क्या नहीं है, पर अपनी
2: हाँ जी,
0: सेफ्टी अपने हाथ है ना जी।
2: बोलते ना मैडम जी खेती के बाढ़ जरूरी है ना पहले। हाँ
0: जी जी
2: जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: जी जी तो सुनील जी कोठियां जलोट आ रहे क्या हाल चाल है, मौसम कदे है उस साइड?
2: ठीक है मैडम जी। पहले तो थोड़ी मतलब औखी धुप लगी है ना, हूँ फिर अंबर लगने वाली तैयारी लग गया था मैडम
0: जी
2: जी,
0: अच्छा लगी हो नहीं मतलब वर्कआउट उस साइड
2: बस लगने की तैयारी करा था मैडम जी, पता नहीं लगा करे घड़ी जी
0: मतलब तैयारी
2: मतलब।
0: है।
2: हाँ
0: अगर
2: जी, हाँ
0: हाँ
2: जी,
0: धर्मशाला दे वैदर दी गल करिए तो धर्मशाला प्यागा बड़ी छाल धुप लगी थी, पर हुण जेहड़ा है मौसम बिल्कुल बरखा भी हुई है कने हुण थोड़ा मौसम साफ हुई है
2: यार मैडम जी धुप दे
0: जी।
2: लगी ही ना, फिर पता नहीं लगा अचानक ही आई है, नेरा हुई है ना फिर बरखा हुई है जाडे, हुन फिर ही है लई पिया लगना
0: जी
2: थोड़े
0: जी बरसात का
2: बूंदा मांगी
0: मौसम है
2: लगे।
0: ना जी
2: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी,
0: जी तो सुनील
2: बाकी
0: जी
2: मैडम जी,
0: जी
2: बाकी मैडम जी को रिक्वेस्ट है कहते
0: जी
2: रुचिका मैडम जी से भी और कहते भी मैडम जी, क्योंकि पहाड़ी प्रोग्राम तो ही कर देना जी, मैं ऑफलाइन रिकॉर्डिंग
0: जी जी जी
2: तो मैडम जी विवाह के गीत भी चलाया करा दो,
0: जी
2: विवाह गीत नहीं होते मैडम जी भी,
0: जी
2: ब्याह
0: जी
2: के
0: जी
2: गीत
0: जी जी जरूर
2: सह
0: जी
2: चलाई दे, क्योंकि यहाँ दे जिया निम्मो चौधरी दिन विवाह घोड़ियां ने मैंने सभी चलाया करा ना मैडम जी
0: जी
2: थोड़ी, क्योंकि
0: जरूर जी
2: मैडम जी ये गीत ना
0: जी
2: हम भूलते चले मैडम जी।
0: जी
2: हाँ जी मैडम जी, तो थोड़ा मैडम
0: जी
2: जी रिक्वेस्ट है तो होते।
0: जी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तो हंदा
2: हाँ
0: जरूर
2: जी,
0: जी यहाँ दी तई कोशिश रहती कि अपनी संस्कृति दा जिहड़ा जुड़ाव है, जितने भी श्रोता अहाँ कन्ने जुड़ा देन या सुना देन, अहाँ तो यही चाहते कि अहाँ दी जिहड़ा संस्कृति है या अहाँ दे जिहड़ा रीति रिवाज हैं से हमेशा जिहड़ा आने वाली
2: जरूर,
0: पीढ़ी है या
2: हाँ जी,
0: पीढ़ी है तिना तक पुजन ना जी।
2: हाँ जी, क्योंकि सारा खत्म हो, डीजे खत्म करी
0: जी
2: थे ना काम मैडम जी, डीजे काम खरे खत्म के पहले आते हैं गाँव के, और ना बहन ही है तो मेहंदी अलग
0: जी
2: गीत गाने थे ना बूटने अलग, हूं तो गाँव गाँव ये भी नहीं पता होना मैडम जी
0: जी कि
2: रीति रिवाज है।
0: बूटने
2: हाँ
0: दा गीत कदिया होंदा है या तेले
2: जी, हाँ
0: पाने
2: जी,
0: दा
2: हाँ
0: गीत किस प्रकार होंदा है ना जी।
2: जी, काफी मैडम एलबम्बा ने जी वर्षा कटोती है भी कहना, जिन्हें
0: जी
2: लड़की के ब्याह दी भी मुंडूवेरे
0: जी
2: भी
0: जी
2: थोड़ा मतलब ऑफ लाइन चलाई दिया करा मैडम जी तो
0: जी जी जरूर जी
2: बाकी तो कोशिश पूरी कर दी मैडम, ऐसी कोई गल नहीं। हाँ
0: जी
2: जी,
0: ता
2: हाँ जी
0: सुनील
2: मैडम
0: जी
2: जी,
0: आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी
2: आज मुझे ब्याह का गीत सुनाई ने मैडम जी, रणकिया सुन पटोल लड़की,
0: जी कुंदिया,
2: रणकिया सुन
0: तुम्हारी आवाज कुछ क्लियर नहीं हो दीजिए
2: मैडम जी, गाना सुनना मैं रणकिया सुन कटोरे कुनी पाया तेल मिले। हाँ
0: जी, कुनी पाया तेल
2: जी रणकिया सुन, हाँ जी,
0: जी जी जरूर है गीत तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा
2: धन्यवाद मैडम जी, नमस्ते
0: जी।
2: जी।
0: ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुहां सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। इसी कन्ने आज कने दिने दी अगर अहां गल करिए 12 जुलाई 2026 दी, इस संडे दा दिन तुहां जरूर इंजॉय करा दे होने न। हर कुसी जो उम्मीद रहती है कि संडे दा दिन आंदा है कि नहीं, हाँ अपने जेड़ा मस्ती भरे पल हैं तिना जो इंजॉय करते हैं तो जरूर अपने जेड़ा मस्ती भरे दिन हैं तिना जो भी इंजॉय करा, कने छुट्टियां भी जरूर इंजॉय करा। तो इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सभी अगर बढ़ाना है कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर भी ले करी जाना है तो चल देना सुन देना इस प्यारी दिया फरमाइशा जो तुम सारी भी इंजॉय करा।

0: परशुदम तो सारे सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दी फरमाइश अशोक जी दी ये फरमाइश यहाँ तक पहुँच गई थी कने से रहने वाले न सिद्धबाड़ी ते तो जरूर तिन्ह तक हाँ ये गीत जेड़ा गीत है भजन है से पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया तेरी जिंदगी फकीरां दी तो जिंदगी तो जरूर फकीरां दी है पर हाँ किस प्रकार अपनी जिहड़ा जिंदगी का सफर है उसको इंजॉय करा देन या करम क्या करम अहाँ करा देन अगर अहाँ भक्ति भाव ने सारे काम कर देन या श्रद्धा भाव रख देन तो कुथी न कुथी अहाँ अपने अच्छे कर्म जरूर कर देन अच्छे कर्म हाँ कुतु करा दे थोड़ा दिया सोच विचार करी कर दिखा थोड़ा दिया सोची करी दिखा दशो तो गल अगर अहाँ करिए हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा अजकना जिहड़ा दिन है से कहो खास है या क्या अहाँ खास जिहड़ा विषय से ले है दशो तो अगर गल करन डिसेबल इदे उपर अगर अहाँ गल करिए कुथी ना कुथी चाहे से बच्चे न चाहे कोई भी है से कुथी ना कुथी चली नहीं पाते न या सुनी नहीं पाते न या दिखी नहीं पाते न ता इस समाज जिहड़ा है ना कुथी ना कुथी अपना अच्छा व्यवहार भी दसदा है कुथी ना कुथी अपना जिहड़ा बुरा व्यवहार भी दसदा है तो इदे उपर अहां गलबात करनी है कने अहां दे अगले जिहड़ा श्रोता न पहले कर दें तिना कने गलबात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: जी धन्यवाद
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दी कने तुहांदा नां की है जी जी दाड़ी ते बोला दे मेघनाथ जी जी तो मेघनाथ जी क्या काम कार लगाया तो हाँ क्या करा दे जी हाँ जी जी तो उनकी आवाज कुछ क्लियर नहीं होती जी
1: ना बोलिया कल नहीं थे कल तो रुचिका जी थे
0: जी जी कल छुट्टियां पर थे ना जी ठीक ठाक लगाई बैठे बेले लगाई करी जी कल ही बेले लगाई करी भी ना जी जी जी इस बारी पानी जेड़ा है से बड़ी दिक्कत दे दा था ना जी पानी नहीं होता था जी जी तो हाँ अपने दाड़ी दे हाल चाल सुनाई दिया क्या नवा ताजा है दाड़ी दा जी
1: दाड़ी दे करे ना हाल चाल
0: जी ठीक ही जी ठीक जी जी ठीक ही चाहिए दे ना जी जी तो आज यहाँ गल बात करा दे थे डिसेबल पर ना जी जिन्हें कि तुहें पता है बच्चे न जेड़ा बोली नहीं पाते न या चली नहीं पाते न या सुनी नहीं पाते न या दिखी नहीं पाते न जी जी तो तुहें क्या लगता कई बार समाज उन्हें जो अच्छा भी बोलता है बुरा भी बोलता है ताने भी सुनना सुनने जो मिलते न जी जी जी गलत होता ना जी जी उतनी अच्छी गल है ना जी चाहे से बच्चे न चाहे बड़े न जी जी जी तुहानी आवाज बड़ी कट्टी कट्टी की ओदी जी जी जी नेटवर्क इशू होना शायद जी जी तो मेघनाथ जी जी कुंते गाना सुनने तो हाँ
1: दिल ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ
0: ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ
1: ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਛਨਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
0: ਜੀ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਛਨਕਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਿਨ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਸੇ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਧਿਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਬਾਧਿਤ ਹੈ ਕੁਥੀ ਨਾ ਕੁਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਤੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਫਿਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇ ਕੁਥੀ ਨਾ ਕੁਥੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਮੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਹਾਂ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਆਹਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਮੀ ਆਹਾਂ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇ ਆਹਾਂ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭੀ ਖੁਦ 'ਤੇ ਚਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਥੀ ਨਾ ਕੁਥੀ ਤੁਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭੀ ਖੁਦ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਆਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੀ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜੀ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਆਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਤਾ ਨਾ ਸਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਹਾਂ ਜੋ ਕੋਲ ਪਰ ਕੋਲ ਕਰਾ ਦੇਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਜੁੜੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ
0: ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ
2: ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ
0: ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਬੋਲਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ
2: ਜੀ ਆਹ ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬੜੋ ਤੇ
0: ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬੜੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬੜੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ
2: ਬਸ ਠੀਕ ਅੱਜ ਬਰਖਾ ਬੇਲੇ ਬਿਠਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ
0: ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਬਰਖਾ ਬੇਲੇ ਬਿਠਾਈ ਤੇ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਬਰਖਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੇਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਂ
2: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਘਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਔਰ ਨੋਇਤਾ ਜੀ
2: ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਬਣੇ
0: ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ
2: ਆ ਲਗਭਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ
0: ਚੱਲੂ
2: ਕਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ
0: ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਔਨ ਕਰੀ ਰੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ
2: ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਤੇਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ
2: ਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਨੇ ਆਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ
2: ਨੇ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ
2: ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ
0: ਜੀ
2: ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਕੋਈ ਸੋਣਿਆ ਨਹੀਂ
0: ਜੀ ਜੀ
2: ਨਾ ਸਭੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚ
0: ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
2: ਕੁਛ
0: चलो हर कोई तो नहीं बोलता, पर कई बार हाँ अपने आसपास ही दिख देन या सुन देन तो थोड़ा दिया बुरा भी लगता है, क्योंकि अहाँ कन्ने भी कल भी कुछ हो ही सकता ना जी। अहाँ ये तो नहीं बोली
2: जी
0: सकते कि अहाँ कुछ भी है, समय जड़ा से समय दा बदलने दा कोई भरोसा नहीं है ना जी।
2: जी जी
0: जी तो तिना दी अच्छे ने अहाँ जो देखभाल करना चाहिए, कन्ने अगर अहाँ बस च ट्रैवल करा दे ना तो जरूर तिना दी मदद करा ना जी।
2: ये मत करना। चलो दुबारा जो खराब
0: जी
2: पे ज्यादा हरा फल बनता।
0: जी सही है ना कि कर्मा दा हिसाब इथु ही है ना जी,
2: जी
0: क्योंकि कर्म कर्म जिड़ा ना से बड़े पर यहाँ पर निर्भर कर दे, पर अहाँ यही सोची करी चल दे ने कि नहीं, अहाँ गलत करी करी भी फिर यही सोच दे कि नहीं यहाँ तो ठीक करा देना जी।
2: ये चलो
0: जी
2: देखो ना काम के लिए अंत
0: जी
2: सोचे पे कोशिश करा अच्छा काम करने की। गलती ने बुरा हुई है सारे मत है जाने
0: जी
2: के बुरा नहीं सोचना चाहिए नहीं करना चाहिए।
0: जी क्योंकि जिंदगी है ना, जिंदगी च अगर अहाँ अच्छा कर दे ना ताई अहाँ अपनी जिंदगी जो बेहतर बनाई पाते ना जी,
2: जी
0: क्योंकि परिवार है, परिवार ताई चलता है जल वहाँ मिली जुली करी काम कर देन या समझ
2: जी
0: देन परिवार जो ताई, कने अगर अहाँ हमेशा अपनी ही चलान देन तो ऐसे परिवार भी टूटी आंदा है बिखरी आंदा है ना जी।
2: जी
0: जी ता तीसी आज तो हाँ कुंदिया गीत कुंडी फरमाइश सुना पसंद करके
2: सौन महीने बरखा जी लगी है ऐसा गुण गाना है।
0: जी जी जरूर जी, ए गीत ए फरमाइश तुह तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
2: धन्यवाद धन्यवाद।
0: जी। ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि करने, तशो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी सकते, करने सफर जो और भी प्यारा बनाई सकते, क्योंकि माटी दी महक जड़ाए से हाँ जो कुथी न कुथी अपनी मिट्टी करने जोड़ी करी रखता है, अपनी संस्कृति करने जोड़ी करी रखता है, तो इसी करने गलबात भी यहाँ दी बड़ी प्यारी चली हो, कने जिंदगी दा सफर है छोटी छोटी गल्लां दा जेड़ा ध्यान है से रखना अहां दा ही काम है, जिन्हें पेरेंट्स अपने बच्चे जो छोटी छोटी गल्ला समझान देन, अगर बच्चे कोई गलती कर देन तो ज़रूर उस गलती पर पेरेंट्स अपने बच्चे जो टोक देन या मना कर देन या डांट देन, पर हाँ उस डांट जो अगर गलत वेच लैन देन बच्चे तो कुथी न कुथी से अपनी ज़िंदगी जो ही नुकसान जड़े से पहुँचा देन, तो ज़रूर पेरेंट्स जिड़े से अपने बच्चे वास्ते हमेशा अच्छे सोच देना, अच्छी सोच रख देना, तो हम भी अपने पेरेंट्स वास्ते हमेशा अच्छा सोचा पॉजिटिव सोचा, इसी करने यहाँ भी तो हम वास्ते पॉजिटिव सोचना है, करने इसी गलबात करने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुँचानी है, अगली फरमाइश यहाँ जो आयु है सुनील जी दी कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोटते, तो ज़रूर तीना तक कहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचा देना, तो हाँ सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा।

0: श्रोता जरा से जरूर अहंती गलबात जड़े से सुनते रहते न कने अहां भी तिना दिया जड़ा प्यारिया प्यारिया फरमाइशा न से तिना तक पहुँचाते न तो जरूर अगले जड़ा श्रोता न सभी कॉल कराते न जरूर तिना जो भी अहां अपनी गलबात करने जोड़ने से क्या अपने जड़ा विचार हैं से रखना चाहते न क्या जड़ा गलबात है से बाकी श्रोता तक पहुँचाना चाहते न तो जल्दी जल्दी कार्यक्रम के सफर च जुड़िया क्योंकि ये सफर जड़ा से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक कने अहां दे जड़ा श्रोता न से जरूर अहां कन्ने जुड़ चुके हो न कन्नी अहां तिना कन्ने गलबात। हैलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। तुहां ठीक ठाक
0: जी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो हाँ अपना जरूर परिचय दे दिया कुत्थे ते रहने वाले हैं जी।
1: मैं इंदु बोले सिद्धवाड़ी ते।
0: जी इंदु जी सिद्धवाड़ी ते बोला दे ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। तो हाँ मेरी गल बात सुनी कि नहीं सुनी?
1: तो मैं रेडियो होनी ऑन किया थोड़ी देर पहले बंद किया बच्चे थोड़ा काम थी करे स्कूले दे कने फिर मैं सोई ही।
0: जी सिर्फ 16 मिनट ही कार्यक्रम च बचिया ना जी।
1: हां जी
0: जी। ता इंदु जी आज हां गल बात करा दे ना डिसेबल दी तो तुहां क्या अपने विचार रखना चाहते क्या तुहां अपने विचार जेड़ा ने बाकी श्रोता तक पहुंचाना चाहते?
1: डिसेबल थी तो मैं पहुंचाना चाहती। सबसे बड़ी दिक्कत तो आंदी जी है कोई बच्चा डिसेबल है ना
0: जी।
1: हां तो जी उसी पे कई पे दिखदे उसमें जेड़ा ना मतलब दिखदे तो दिखदे रही जंदे
0: जी।
1: चलने च दिक्कत है कई बेचारे किस तरीके ने चले तभी दिखा दे नोटिस करते है जेड़ा एक डिसेबल हुंदा कोई भी पर्सन है तो बेचारा ना बड़ी मतलब अपने आप बड़ा फील करता कि मुझे इस तरीके ने दिखा देगा इस तरीके ने मुझे पूछा दे बार बार फिर ओ घूमे चाहिए बार बार घूमे सामने आए कि बार बार बार बार क्वेश्चन मतलब अपने जगह मन च क्वेश्चन देती है उस सामने पूछ दे सह
0: जी जी।
1: परेशान चलो मतलब घर के मैंबर पर सह के बेचारे कितने परेशान होंगे उपरे तो सह सोचते अगर तेना पानी का गिलास पानी पीना होगा तो सह मतलब कई बार बोली नहीं पाते कि सू पानी का गिलास दिया
0: जी।
1: हाँ पानी पीना है कई बार मतलब सोचते कि पता नहीं थके होंगे कि नहीं इस टाइम गुस्सा है तो हाँ पता नहीं कि गलांगे तो सू पता नहीं किया क्या ट्रीट करना की किस तरीके ने हाँ बोलना है तो मतलब कई बार बच्चा बच्चे होने बुजुर्ग डरे भी नहीं बोलते कई बार शरमाए भी जाते फिर क्या क्या मतलब उन्होंने अपने एक गलानी भी महसूस करते हैं
0: जी जी क्योंकि हर किसी का नेचर अलग अलग होता है ना जी।
1: हाँ जी
0: क्योंकि बच्चा भी बोलने पे हिचकिचाता है कि कुछ ही मैं गलत बोला था कि मेरी पता नहीं गल सुननी है या नहीं सुननी है। चलो पेरेंट्स अपने बच्चों वास्ते चाहे से कुछ भी है ना जी पेरेंट्स जरूर अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट देंगे ना जी। पर
1: एक चीज हाँ जी
0: जी जी बोला
1: एक चीज में मैंने बोला था कि जी घर के मेंबर होंगे ना बड़े जी
0: जी जी
1: जी हम मैं मेरा मुन्नु भी है डिसेबल ही मुन्नु मेरा तो घर जैसे भी दिक्कत आती जी कई बार बुजुर्ग ही बोलेंगे मतलब जी इसके पापा वगैरह या कोई भी चुकने बोलते मतलब जोर होगा बड़ी बड़ी हिम्मत आई होगी।

0: उनके थोपे एक अपनी कानून की उन्ना ही है चुकड़ा बच्चा
1: जी
0: बच्चे का दोनों दही है ना
1: जी जी सारे दही सही है ना कि मैं ये भी बोलिया था कि जिन्ना खेतीबाड़ी दा काम चल रहा था सारे जो ही पता है परिवार जो पता है कि नहीं अहां सारे जो ही करना पौना है पर अजकने दौर दी गल करिए थोड़ा दिया प्यार भावना या अपनापन बिल्कुल खत्म है हर कोई अपना अपना ही करा दा कुछ ही होना है कि हेल्प भी करा देन सोगी साथ दे दे भी एन तो तिना ही अगर इस बच्चे की जिम्मेवारी माँ दी ही नहीं है पिता दी भी है बाकी जरा घरे के सदस्य ने तिना दी भी है ना जी
0: हाँ जी बिल्कुल पर ओ तक क्या समझ नहीं पड़ी है एक प्यो ही है का पता ओ ही चुकाना तो किसी उसी वे लगी पोंदे बोलना कि मतलब नेगेटिव वेच ले जंदे कि इससे नहीं चुकांदा भाई के नहीं चुकांदा देखा मैं तो ये बोलना चाहती शशि जी पूरे मतलब सुना दे इतने हर लोग की भाई चाहे चुकोए चाहे ना चुकोए बच्चा है या बुजुर्ग है पर सा चुकाना तो सांझे पौने पौने क्योंकि सा साढ़े घरे दे तो हाँ जो अगर पहले सोचा हाँ जो ना कुछ ऐसी वैसी अनहोनी हुई है कुछ भी हो सकता सर ने भी
1: कोई भरोसा नहीं है ना जी समय का
0: क्या भरोसा है अज खरा है कल बुरा है क्या भरोसा है
1: जी जी
0: हमेशा गल करनी सोची समझ गई क्या बोला क्या मतलब बल्कि दुबे की मजबूरी समझना चाहिदी
1: जी जी तो इंदु जी समय जेड़ा स्याहल बड़ा थोड़ा दिया तो होते जरूर तो अपनी फरमाइश दसी दे इन करने तो
0: नहीं बस कोई गल नहीं आज का टाइम थोड़ा रही है ना फिर कभी सुन गया अपनी फरमाइश बस मैं तो गल करनी थी मतलब बड़ा टाइम हो गया गल के दिया
1: जी धन्यवाद जी तो हंदा जुड़ने
0: वास्ते जी तो हंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी बड़े अच्छे प्रोग्राम होते थोड़े कने फेसबुक पर भी दिखा दिया
1: जी थैंक यू जी
0: जी वेलकम जी
1: जी तो चलते न कार्यक्रम दे सफर च अगे बढ़ते न कने अगली फरमाइश तो तक पहुंचाते न।

दर्शकों तो सारे ही सुनिया ई प्यारा दिया गीत, प्यारा दिया भजन, चिमटे दी छनकार। इस गीत की फरमाइश हाँ जो आई हुए दाड़ी ते गणतीना दा ना वे मेघना जी, तो जरूर मेघना जी तो कहाँ ई गीत पहुँचाया कने अगली जेड़ा फरमाइश है सभी तो तक पहुँचा देना।

श्रोताओं तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश तो इसे ही फरमाइश कहते हैं। हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगर बढ़ाते हैं कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं।

0: चलन कहाँ जा रहे हो? Let's go.
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई.
3: मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए.
2: थैंक यू.
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
3: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ. अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं.
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है. टापू टूपू हम सोचते हैं कि काश पानी होता. इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है. पानी बचाने के कई उपाय हैं. जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।

0: टेस्ट तो कर लो।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, अब खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसकी सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: चलन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई।
3: मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए।
2: थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
3: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है ये?

92 मेगाहर्ट्ज पुठे रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और श्रोतो आऊँ तो सुगे तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर। क्या हाल चाल न तुंदे और क्या हाल चाल न तुंदे ग्रां रे। उम्मीद करना तो है भी ठीक ग्रां भी ठीक। श्रोतो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ यानी कि तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर हाजिर पूछी हुआ। आइये श्रोतो कार्यक्रम रा आगाज कर देने सभी पहले इस खूबसूरत गीत होगी। आइये हूं देन श्रोतो एक गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर थे रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा श्रोतों इस वक्त चल रही ना तुम जैसा भी वे रेडियो सेट में था श्रोतों हेर लिया मुरली कैसे बजाई काने। जी हाँ, ऐसे बजाई मुरली कि सुध बुध किया सुख होएगी। ईशान भारद्वाज इस गीत अंदर ये दसवा कि मुरली ऐसी बजाई थी कि सुध बुध किया सुख होएगी थे। तैयर श्रोता हूँ कार्यक्रम जो हगु बनंदन और हगु हुंदन है प्यार दिया गीत तो है बने रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा है। कार्यक्रम इस वक्त चल रहा हिंदी अपनी गप्पा तो शोधों केवल लूंदन ईशान भारद्वाज की रूप भी बदले और जहने रूप बदले तो माबुड़े भी डरे, सेली भी डरी गोरारी और सब डरे है ना। पर रूप बदलना बड़ा ज्यादा जरूरी है। श्रोताओं तो है भी अपनी जिंदगी अंदर रूप जरूर बदला, लेकिन इंसानियत रहा रूप किया सो जरूर बदला। श्रोताओं यानी कि अच्छे काम किया, अच्छे रूप अंदर काम किया सो जरूर करो करा और अच्छे अच्छे काम जरूर करो करा। बहरहाल श्रोताओं याद रखा, अगर तो है कुछ अच्छा हुनुंदे ने समय तो सो हुनुंदे ने कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा सचिन कपूर सोगे। आइए श्रोताओं कार्यक्रम जो आगू बढ़न देन और अगला गीत हुनदेन तुंदे वीडियो सेट में।

छोटा ये रेडियो गुंजे ना और तुम अपना रेडियो गुंजे ना और आऊं तुम अपना सचिन कपूर 91.2 MHz पटी तो है रेडियो गुंजन जो ट्यून कर रहा था छोटा। जी हाँ, बिंद्रा बना वो खेरी गोजरियो कुणी वो न रहने है ना, कुणी वो न रहने तब बिल्कुल क्या बोलूं दे निशान भारद्वाज इस गीत अंदर तो है सब ये हुनु अशोतों और तशो तो कान के बोलूं दे कि अगली ये हटी गच्छे और पिछली ये मुड़ी गच्छे पर गबली जो किया सो गाना न दिला तब तो है भी बिल्कुल जो गब्बे बिखरे तुम दे तस्यो मत गाने दे बखाली हड्डा को कार्यक्रम बड़ा मस्त और ये चलना मस्त मस्त बने करे इस कार्यक्रम बरहाल श्रोतों याद रखा। अच्छा हुनुंदे था क्या हुनुंदे रेडियो गुंजन तब शो तुम अय्या कार्यक्रम जो हागो बड़न और कार्यक्रम मंच हुनदन अबे प्यारे दिया गीत।

श्रोतों कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है अपनी गप्पा तुंदे सभी वे वीडियो सेट में और बिल्कुल ईणा पीवा वो मुझो भी ईणा पीवा को कार्यक्रम चल रहा था मुझो भी ईणा पहना है तुंदा दिल आऊना थोड़ी सकदा सभी श्रोता रहा और बिल्कुल आक मौके किया सो मिलने जो खोल वो खिड़की ताक मौके तो है भी खोली दे अपनी अपनी खिड़की आ रहा हेरा कुणी छुंदा मिलने जो और कुणी रुंदा तुसु बार आता हूँ नारदाना हो शिमलो नारदाना हो बड्डी वो सुट्टा नक तेरा ते जो क्या गलाना हो अब जिसकी वो नक्का सर हमने वो आता था सीओ क्या बोलना है ना जाए सो दब्बू बुआ जाए सो कोड़े बुआ बरहाल है श्रोताओं सभी अपने अपने नक्का सर हम किया सो रखना चाहिए इंदिया याद रखा है तो है कुछ खरा होनुंदा इंदा कार्यक्रम इंदी अपनी गप आइए श्रोताओं कार्यक्रम जो बिल्कुल हगो बढ़न देन और कार्यक्रम में होन देन ये प्यार है दिया गीत

आहा शो तो मजा चले आए संगीत हुनेरा चिट्टी वो चरेली नारा पर आयो कजो मेवे दिलड़ू जो भायो तबे चिट्टी चरेली नारा के बंदी ने शो तो सो सीधा दिलड़ू जो के ना सो वही गंदी ना है ना और फिर वही भी वही गंदी ना ता पर शो तो है गल्लारा भी याद रखा चिट्टी वो चरेली नार के है सो कुंवारी बुआ को रोज रोज घरे घरे झंडे के सोना जोलना तुम दे है ना को आज कल ट्रेंड चल रहा ताओ बल्लो कर दा और तुझको पता जो भी बनो बिल्कुल साफ और सटीक बनो बहरहाल याद रखा तो है कुछ खरा हुनुं देन ता सो हुनुं देन कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा सचिन कपूर सोगे शो तुम बहरहाल टाइम मारा ना पता ना चलता तू सोगे गप मार दे तू सोगे इन इन गप्पा लंदे ता शो तुम मुंजो यानी कि तुम दे अपने होस्ट हो दोस्त सचिन कपूर जो दिया तो है इजाजत चलनुआ फिर मुल देन दत्ते जय धर्मशाला जय हिमाचल रखा अपना अपना ख्याल सब हुन दे रहे तुम अपना वेडियो गुंजन धन्यवाद।

0: नमस्कार, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। हिमाचल के मंदिरों में दान की गिनती की होगी वीडियोग्राफी। मेडिकल कॉलेजों में 125 करोड़ से स्थापित होगी ऑटोमेटेड लैब। अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। तेल बाजार पर मंडराया संकट, महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, IEA की बड़ी चेतावनी। भारत न्यूजीलैंड ने संबंधों को दिया रणनीतिक महत्व का दर्जा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA ने प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के 105 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी के मद्देनजर आयोग ने तीनों पोस्ट कोड के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 11 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक पुनः खोल दिया है। अभ्यर्थी 25 जुलाई 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल की माटी पर किसानों की समृद्धि की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समृद्धि की इस कहानी की रूपरेखा तैयार की है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से किसानों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वर्ष दर वर्ष इसमें उल्लेखनीय वृद्धि भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार वर्ष 2026 से 2031 तक हाई वैल्यू नट मिशन की शुरुआत करेगी। इस मिशन के तहत अखरोट, बादाम, खुमानी तथा चिलगोजा जैसे उच्च मूल्य वाली समशीतोष्ण टेम्परेट नट फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मिशन बागवानी क्षेत्र के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों जैसे पुराने हो चुके बागानों, कम उत्पादकता, कटाई के बाद पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी तथा मूल्य संवर्धन की सीमित अवसरों का समाधान करेगा। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद हिमाचल सरकार ने राज्य के सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले मंदिरों तथा अन्य प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए SOP जारी की है। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य श्रद्धालुओं के दान, आभूषण, नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों में सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिर प्रबंधन समितियों को भी इन सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI सुविधा का शुभारंभ किया। IGMC शिमला के बाद ये उन्नत इमेजिंग तकनीक हासिल करने वाला चमियाना संस्थान प्रदेश का दूसरा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 3 टेस्ला MRI मशीन के चालू होने से संस्थान के विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों की जांच क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये मशीन न केवल उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग देगी बल्कि बेहद कम समय में जांच पूरी कर सटीक निदान सुनिश्चित करेगी। दुनिया में एक बार फिर तेल संकट गहराने की आशंका जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़कर बड़े युद्ध का रूप ले लेता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और ईंधन के कीमतों पर पड़ सकता है। IEA का कहना है कि फिलहाल वैश्विक तेल बाजार धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव इस सुधार को कभी भी पलट सकता है। अगर इस क्षेत्र में तेल उत्पादन या समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई घट सकती है और पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सुरक्षा पर समझौता करने के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के साथ भी समुद्री सुरक्षा सहयोग की शुरुआत की है। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है। ये रोडमैप समुद्री क्षेत्र में संवाद, सूचना साझाकरण, संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा, जिससे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि आएगी। साथ ही भारत न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक महत्व का दर्जा दिया है। देश के किसी भी स्थान से आने वाले पर्यटकों एवं यात्रियों के लिए हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा पुख्ता हो गई है। मेहमानों की यात्रा को अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने सभी नागरिकों के लिए रिचसेफ HP मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है। इसे पुलिस की ओर से डाउनलोड करने की अपील की जा रही है। इस ऐप को GNA यूनिवर्सिटी के तृतीय वर्ष के इंटर्नशिप के विद्यार्थियों में आर्यन और मोनू ने ऊना पुलिस संघ मिलकर तैयार किया था। बीते माह मई में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने इस ऐप का आरंभ किया और प्रदेश स्तर के लिए ऐप को डेवलप करने की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश के हकदार हैं। उन्हें केवल इस आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके अनुबंध में इसका उल्लेख नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि मातृत्व अवकाश एक वैधानिक अधिकार है जो किसी सेवा, अनुबंध या समझौते की शर्तों पर निर्भर नहीं करता। अदालत ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के द्वारा धारा 27 का हवाला देते हुए कहा कि गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ देना नियोक्ता का कानूनी दायित्व है। स्कूली शिक्षा निदेशालय ने विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए JVT शिक्षक के 72 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 जुलाई को होगी। शिक्षा निदेशालय ने जिलावार रिक्तियों को रोस्टर और पात्रता संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI की पढ़ाई अब पारंपरिक तकनीकी ट्रेडों तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 संस्थानों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 6 ITI में डेयरी, बागवानी और प्राकृतिक खेती के नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। इस गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम गीत सुहाने नए, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम का ये समय है और समय है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का, यानी कि शाम के 6 बज गए हैं श्रोताओं। और हमारे बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो आपका ये इंतज़ार अब हमने कर दिया है ख़त्म और लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सबसे पहले सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। बिल्कुल श्रोताओं, और कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है और अभिनंदन है। साथ ही जो श्रोता अभी तक कार्यक्रम में नहीं जुड़े हैं किसी वजह से, और अगर कहीं दूर से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उनसे भी हम यही कहेंगे कि जल्दी से कार्यक्रम में आइए, जुड़िए और हमारी बातचीत का हिस्सा बनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं नए हमारे साथ जुड़ते हैं। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप रोज़ाना सुनते हैं इसी समय, यानी कि शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे का जो सफ़र है वो हमारा रहता है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आपके साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी को पता है कि हम करते हैं विचार के साथ। तो लेते हैं आज का विचार, श्रेय मिले या ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। बिल्कुल श्रोताओं, और इसी विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है, और कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी को मालूम है कि प्यारे से गीत के साथ भी करते हैं, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ आज हम शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। और कौन सी जानकारियां हैं, कौन सी बातें हैं, वो भी आपको ज़रूर सुनवाएंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। फिलहाल के लिए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। इस तराने के साथ जुड़िए श्रोताओं, जिसे हम लेकर आए हैं फिल्म शूरवीर से, कविता कृष्णमूर्ति और साथ में मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम। गुड इवनिंग धर्मशाला श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम का आगाज हमने किया इस प्यारे से गीत के साथ, आवाज़ हमारी इसी वादी में रहेगी। बिल्कुल श्रोताओं, ये जो हमारे गीतकार हैं इनकी आवाज़ वो रहे ना रहे, लेकिन ज़रूर इस वादी में, इन वादियों में रहेगी ही रहेगी। और कहते हैं ना कि कुछ बातें, कुछ यादें हमेशा रह जाती हैं याद बनकर, और अगर हम भी अच्छे काम करें, अच्छा कुछ ऐसा करें जो एक याद बनकर रह जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। खैर, यादें अच्छी हों बुरी हों, वो यादें बनकर रह ही जाती हैं। चाहे बुरी बात भी क्यों ना, वो भी हमारे दिलों दिमाग पर हमेशा रहती है, लेकिन ऐसी बातों को हमें निग्लेक्ट करना चाहिए, भूल जाना चाहिए और अच्छी यादों के साथ हमेशा बने रहना चाहिए। और आप सभी इस समय बने हुए हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, साथ ही आप इस कार्यक्रम को 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के ढेतवाल की आवाज़ पर भी सुन सकते हैं और इस समय सुन भी रहे हैं। हमीरपुर से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि हमारे हमीरपुर के श्रोता भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारे साथ जुड़े होंगे। उनका प्यार हम तक पहुँचता रहता है समय समय पर, और श्रोताओं हमारा प्यार भी हम आप तक पहुँचाते रहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आज खास हम बात करने वाले हैं पेपर बैग डे पर। आज खास हम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम पेपर बैग डे मना भी रहे हैं, और श्रोताओं बार बार वही कहेंगे कि पेपर बैग डे यानी पेपर से बने हुए बैग्स का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए हमें, और प्लास्टिक को बिल्कुल टोटली नो कहना चाहिए। हिमाचल में तो हम ये कहेंगे कि प्लास्टिक किसी हद तक बंद है, नहीं है, लेकिन अगर आप पंजाब वाली साइड चले जाओ, ऊना चंडीगढ़, जहाँ भी आप जाओगे, कोई छोटी सी भी चीज़ लोगे, अगर एक सब्ज़ी भी आप लेते हो तो आपको वो प्लास्टिक के बैग में दी जाती है। तो प्लास्टिक जो है श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि इसे ख़त्म होने में, नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। और कार्यक्रम में आज हम ज़रूर इस विषय पर और भी आपके साथ बातें करेंगे और सोचेंगे थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में, थोड़ा सा हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रोताओं, बातों को थोड़ी थोड़ी देर बाद विराम देना भी ज़रूरी है और आपका मनोरंजन भी करवाना ज़रूरी है। तो बातों को यहीं पर रोकते हैं और फिर से आपको लिए चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं साथ मिलकर गजब फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। सब्सक्राइब करें।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ आप इस समय जुड़े हुए हैं और आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं। और इस गीत में बात भी हुई थी कि इस बरस जो बरसेगा सावन वो कैसा होगा। खैर, वो तो अब जब समय आएगा तब पता चलेगा कि सावन कैसा होगा, कैसी बरसात होगी। पर हम यही दुआ करेंगे कि किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और बरसात जो है वो आकर आराम से चली जाए, किसी का कोई भी ऐसा नुकसान ना हो जिससे कि हमें परेशानी हो या किसी को भी परेशानी हो। लेकिन फिर भी श्रोता, हम यही कहेंगे कि कुछ एक तैयारियां हमें पहले से कर लेनी चाहिए। बरसात आने वाली होती है और हमें समय नहीं मिलता एकदम से कि हम कुछ एक सावधानियां बरत सकें या कुछ एक ज़रूरी काम जो है वो कर सकें। अपने घरों के बाहर अपनी नालियों को चेक कीजिए, अगर कहीं से वो ब्लॉक है उन्हें ठीक कीजिए, खोलिए। और जहां तक कुल्ले हैं, कुल्लों की बात हम करते हैं, गाँव में चले जाइए तो कुल्ले आपको मिल जाती हैं। उन कुल्लों की साफ़ सफ़ाई भी आजकल के दिनों में हमें कर लेनी चाहिए ताकि बरसात आए और पानी जब एकदम से आएगा तो फिर वो तबाही तो मचाता ही है। उसके लिए हमें पहले से ही सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला मनोरंजन के साथ साथ जानकारियाँ भी आप तक पहुंचाता है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं एक जानकारी की ओर। हिमाचल की माटी पर किसानों की समृद्धि की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समृद्धि की इस कहानी की रूपरेखा तैयार की है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से किसानों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही है। श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वर्ष दर वर्ष उसमें उल्लेखनीय वृद्धि की जा रही है। अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की 50 रुपये प्रति किलोग्राम। कच्ची हल्दी की बात करें तो 150 रुपये प्रति किलोग्राम। पांगी घाटी की जौ 80 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अदरक की 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद की जा रही है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि पहुंचाई आप तक रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और साथ ही श्रोताओं, प्राकृतिक खेती इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई बात है, प्रकृति से जुड़ी हुई बात है। पर्यावरण को ठीक रखने में हम प्राकृतिक खेती को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने मुनाफे के लिए कई बार बहुत सारी ऐसी रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी सब्जियां तो बहुत अच्छी लहलहा जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम जो है हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और हमारी मिट्टी पर भी पड़ता है। तो श्रोताओं, कोशिश कीजिए कि प्राकृतिक खेती को इस्तेमाल कीजिए। घर में भी अगर आप साग सब्जी लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि गोबर की खाद ही इस्तेमाल की जाए, या फिर अपने घर का जो कूड़ा होता है, जो साग सब्जी या फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके बच जाते हैं, उन्हें भी आप एक खड्डे में इकट्ठा कर सकते हैं और वो बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार होती है। तो श्रोताओं, पर्यावरण के लिए सोच विचार करना चाहिए और इन छोटे छोटे काम से हम पर्यावरण को भी ठीक रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं और अपने मनोरंजन के लिए सुन सकते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। तो चलिए चलते हैं, कार्यक्रम में शामिल करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना सदमा फिल्म का ये गीत, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया है। बिल्कुल श्रोताओं, बहुत सारे गम, बहुत सारे दुख जिंदगी में हमें मिलते हैं और हम उन्हें गले लगा लेते हैं। गले लगाने के बाद श्रोताओं कहीं ना कहीं हमें खुशी भी नसीब होती है, इसलिए खुशी में दुख में हमें बिल्कुल भी हारना नहीं है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे अपनी बातों के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो कुंचन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आज आप सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में गीत और इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और जो अभी अभी कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है और हमें सुन रहे हैं या फिर लाइव हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, उन सभी को एक बार फिर से सुषमा की गुड इवनिंग नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम जानकारियों के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करवाते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके साथ करने से कई बार हमें भी कई बातें ऐसी क्लिक होती हैं दिमाग पर और हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे श्रोता ज़रूर उन बातों को सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते होंगे। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं पेपर बैग डे की। श्रोताओं, बहुत पहले से ही हम लोगों ने कई बार देखा है, हमारे बड़े बुज़ुर्ग दादा दादी नाना नानी कई बार अपना राशन लेने बाज़ार निकलते थे तो उनके पास कोई भी बैग आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि ना प्लास्टिक का बैग मिलेगा ना ही पेपर बैग मिलेगा। उनके पास मिलते थे तो कपड़े से खुद के बनाए हुए सिले हुए थैले, और हम उन्हें देखते थे तो हमें लगता था कि क्या ये झोला सा उठाकर चल पड़ते हैं, तो हमें लगता था कि कोई बहुत सुंदर सा कैरी बैग हो हम वो लेके जाएं, हम तब शर्माते थे। लेकिन आज उस बात को आज अगर हम याद करते हैं तो हम सोचते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो थे वो बहुत समझदार थे, और जब हम ऐसे कपड़े के थैले लेकर जाते हैं, कोई भी सामान लेकर आते हैं, ना तो उसका फटने का डर होता है और ना ही हमें किसी बात की चिंता होती है कि इतना सामान कैसे उठाएंगे। क्योंकि आजकल के अगर पेपर बैग भी आप ले लेंगे या कोई भी कपड़े का बैग भी ले लेंगे जो आजकल मार्केट में मिलते हैं, उनमें हम बहुत ज़्यादा सामान नहीं डाल पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाने के कारण उसके हैंडल या तो टूट जाएंगे या वो फट जाते हैं। तो श्रोताओं, कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी देते हैं और कई बार हम इग्नोर करते हैं कि नहीं वो गलत है हम सही हैं, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल सही थे, सही हैं और सही रहेंगे। तो श्रोताओं, घर पर अगर आपके पास कोई भी वेस्ट कपड़ा बचा है या कई बार कुछ कपड़े ऐसे बच जाते हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके अगर हम थैले बनाएं छोटे छोटे और सामान लेने मार्केट में जब हम जाते हैं उन्हें लेकर जाएं, तो सच मानिए आपको भी अच्छा लगेगा और साथ ही श्रोता उनको आकर हम वॉश कर सकते हैं, धोकर दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेपर के बैग, अखबार से बने हुए बैग एक बार यूज़ के बाद फट जाते हैं। प्लास्टिक तो बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमें प्रण ले लेना चाहिए कि अब प्लास्टिक को हम नो नो ही कहेंगे। बिल्कुल श्रोताओं, और पर्यावरण के बारे सोचेंगे और इस बात पर भी थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। और अब कार्यक्रम में फिर से बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको बरसात की धुन। इस गीत को जुबीन नौटियाल की आवाज़ में अब आप सुनेंगे आपके अपने रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस समय आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय रोज़ाना रहता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और इस कार्यक्रम में आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीत तो हम लेकर आते ही हैं, साथ ही जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। तो एक बार फिर से चलते हैं एक जानकारी की और। हिमाचल प्रदेश वन विभाग एवं NTPC कोल डैम के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार सायं NTPC कोल डैम परिसर में पौधारोपण कर वन संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के वन बल प्रमुख एवं CPD जायका डॉक्टर संजय सूद ने किया। डॉक्टर संजय सूद ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने का संदेश दिया। श्रोता, उन्होंने कहा कि बढ़ते जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी, लेकिन इस जानकारी में ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर, नहीं पूरे जीवन काल में अगर हम एक पौधा लगाएंगे तो श्रोताओं कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पौधे आप लगा सकते हैं उन्हें लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। इस जानकारी को आप तक पहुंचाते हुए मुझे एक बात याद आ रही है। श्रोताओं, फेसबुक पर एक व्यक्ति है जिसकी कई बार जो है वो वीडियो आती रहती है, और वो व्यक्ति क्या करता है, किसी भी टूटी फूटी इमारत पर या किसी भी सड़क के किनारे या किसी की घर की दीवार पर कोई भी वृक्ष जो है वो कहीं जड़ पकड़ लेता है और बहुत अच्छे से फैलने लग पड़ता है। तो वो व्यक्ति जो है वो उस प्लांट को, उस पौधे को उस दीवार से निकाल कर या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे भी वो बिना मतलब से उग जाता है, जिससे कि बिल्डिंग को कोई नुकसान है या उसे वहाँ अच्छी जो पोषण है वो नहीं मिल पाएगा, वहाँ से उसकी जड़ों को उखाड़ कर वो बड़ी ही आराम से जड़ों को निकालता है और कहीं ऐसी जगह पर उसे फिर से दोबारा से लगाता है जहाँ वो एक अच्छे पेड़ के रूप में खड़ा हो सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है श्रोताओं, और उस वीडियो को देखकर मुझे भी ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो पेड़ बढ़ रहा था किसी बिल्डिंग पर, टूटी फूटी इमारत पर या किसी की घर की दीवार पर, और अगर वो इसी तरह से बढ़ता जाता तो उस बिल्डिंग को खतरा होना था और वो अच्छे से बढ़ नहीं पाना था पेड़ भी। तो उसे उसके सही जगह पर पहुँचा कर भी हम पर्यावरण का साथ दे सकते हैं। खैर,

अपनी अपनी सोच है और अपने अपने सोच के मुताबिक हम लोग काम करते हैं, पर कहने का मकसद यही है कि पर्यावरण के बारे में सोचिए। और आजकल तो देखिए मौसम भी वही है कि कोई भी बीज आप बो दोगे या कोई भी पौधा उखाड़ कर कहीं लगा दोगे या पौधे को कहीं भी उखाड़ कर आप कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट करोगे तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो श्रोताओं, आप ही काम कर सकते हैं। हम घरों में आजकल बहुत सारे फल फ्रूट्स लेकर आते हैं, उसमें से कई बीज जो हैं वो पौधे के रूप में जो है वो बदल जाते हैं। तो अपने इन बीजों को कभी भी फेंकिए मत, कहीं भी किसी छोटी से बर्तन में या वेस्ट पड़ा हुआ कोई गमला है या बाल्टी है उसमें डाल दीजिए। अगर वो पौधा अच्छे से पनपता है, ठीक से चलता है, तो उसे उखाड़ कर आप कहीं खुली जगह में भी लगा सकते हैं। मकसद यही है, पर्यावरण को बचाना है और हरियाली को बढ़ाना है। तो श्रोताओं, इस जानकारी और बातचीत को अब यहीं पर हम विराम देंगे, फिर से आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। धुरंधर 2 फिल्म का ये गीत श्रोताओं अब आप सुनेंगे अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और कार्यक्रम को सुनते हैं और गीत आपको पसंद आते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और हम कोशिश करते हैं कि हर पसंद के गीत सुनाए जाएँ, नए भी और पुराने भी। सबका ख्याल जो है श्रोताओं वो रखना पड़ता है, पर कई बार कुछ लोगों को कई गीत पसंद आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, लेकिन खैर गीत तो गीत है, संगीत के साथ जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है श्रोताओं। तो कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के 105 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित किए हैं। इन पदों में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 60 पद, रेडियोग्राफर के 30 पद और इसके साथ वरिष्ठ प्रयोगशाला टेक्नीशियन MLT ग्रेड 2 के 15 पद शामिल है। इन सभी पदों पर भर्ती जॉब ट्रेनी आधार पर की जाएगी। ये 105 पद आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या 4/2026 दिनांक 28 फरवरी 2026 के माध्यम से विज्ञापित 196 पदों के अतिरिक्त है। पहले जारी विज्ञापन में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 26008 के 176 पद और वरिष्ठ प्रयोगशाला टेक्नीशियन MLT ग्रेड 2 पोस्ट कोड 26012 के 10 पद तथा रेडियोग्राफर के 10 पद शामिल थे। इसके बाद 30 मार्च 2026 को इस विज्ञापन में विभिन्न श्रेणियों के 18 अतिरिक्त पद भी जोड़ दिए गए थे। इन अतिरिक्त पदों को 28 फरवरी 2026 के मूल विज्ञापन तथा 30 मार्च 2026 को जारी परिशिष्ट के साथ सम्मिलित किया जाएगा। इसी के मद्देनज़र आयोग ने तीनों पोस्ट कोड के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 11 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक पुनः खोल दिया है। अभ्यर्थी 25 जुलाई 2026 की रात 11:49 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 4/2026 दिनांक 28 फरवरी 2026 तथा 30 मार्च 2026 के परिशिष्ट के तहत पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत सा गीत जो है वो इंतज़ार कर रहा है आप तक पहुंचने का। तो चलिए इस गीत को जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाते हैं, जिसे हम लेकर आए हैं तलाश फिल्म से। और श्रोताओं, 1969 की ये फिल्म है और गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। ऐसे ही गीत बहुत सारे कार्यक्रम में अभी बाकी हैं श्रोताओं, और बातचीत भी आपके साथ करनी है, जानकारियां भी आप तक पहुंचानी है, तो आप यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में समय 7 बज गए हैं और समाचारों का समय हो रहा है, तो पहले सुनते हैं समाचार, बाकी की बातें करेंगे समाचारों के बाद।
1: भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।

0: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हान्यू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय रहता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। तो श्रोताओं, समाचारों के बाद लीजिए कार्यक्रम को फिर से एक बार शुरू करते हैं गीत के साथ और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं अभी आपने सुना ये गीत जो कि हमने लिया था जो जीता वही सिकंदर फिल्म से उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाज़ों में ये गीत था श्रोताओं। और इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज एक और ख़ास। आज श्रोताओं हम सभी मना रहे हैं नेशनल सिंपल सिटी डे, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर सादगी में छिपी होती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा दिखावे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मन की शांति, संतोष और खुशियाँ महंगी वस्तुओं से नहीं बल्कि सरल सोच, अच्छे व्यवहार और संतुलित जीवन से मिलती है। सादगी का मतलब ये नहीं श्रोताओं कि हम अपनी इच्छाओं को छोड़ दें, इसका अर्थ है ज़रूरत और लालच के बीच का अंतर समझना, संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना। तो श्रोताओं जब हम कम बर्बादी करते हैं, अनावश्यक चीज़ों को खरीदारी से बचते हैं, समय का सम्मान करते हैं और रिश्तों को समझ देते हैं या रिश्तों को समय देते हैं, तब हमारा जीवन अपने आप सरल और खुशनुमा बन जाता है। बिल्कुल श्रोताओं, और जीवन में कहते हैं ना सिंपलिसिटी होना ज़रूरी है, व्यवहार में सिंपलिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब एक और गीत भी बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं और सुनते हैं अफसाना प्यार का, इस फिल्म का गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और कार्यक्रम इस समय आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। आप सभी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं 6 बजे से, और आप सभी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, आप सभी हैं तो हम हैं, और ये

0: प्यारे प्यारे कार्यक्रम हम आपके लिए ही लेकर रोज़ाना हाजिर हो जाते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी बात हम करेंगे बरसात के मौसम में हम अपना स्वास्थ्य जो है उसे किस तरह से संभाल कर रखें, किन बातों का खास ख्याल रखें। जिस तरह कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी फुहार भी लेकर आता है, हरियाली भी लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में कई तरह की बीमारियां जो हैं वो भी खतरा बन जाती हैं। तो श्रोताओं, सबसे पहले हमेशा साफ़ और उबला या फिल्टर किया हुआ पानी हमें पीना चाहिए और बाहर खुले में मिलने वाले कटे हुए फल, चाट, पकौड़ी, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। बरसात का ये मौसम है श्रोताओं, और हम लोग खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं। जब भी मार्केट में चले जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम कुछ ना कुछ खा लें, ख़ास करके पानी पूरी जो आजकल हम लोग खाते हैं उसे भी खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि पानी किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है हमें नहीं पता होता। और अगर हम कहीं बाहर गए हैं, बारिश में भीग गए हैं, तो जल्दी से हमें वापस आकर अपने कपड़े जो हैं वो चेंज कर लेने चाहिए, सूखे कपड़े पहनने चाहिए, और हो सके तो हमें अपने साथ अम्ब्रेला लेकर ही निकलना चाहिए। और बहुत तेज़ बारिश हो तो कहीं रुक कर वेट करना चाहिए कि बारिश थोड़ी सी थम जाए, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, भीगने से बचना चाहिए। बच्चों की बात करें तो बच्चों को भी आजकल पानी से बचाना चाहिए। बच्चों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए, कहीं पानी मिलना चाहिए, वो मस्ती शुरू हो जाती है श्रोताओं। और मस्ती तो खैर हर कोई करता है, बरसात में कई बार भीगना सभी को पसंद है, लेकिन बीमार ना हो इसका ख्याल भी हमें रखना चाहिए। खान पान का भी हमें ख़ास ख्याल इन दिनों में रखना चाहिए, और हम भी ख्याल रखते हैं आपका मनोरंजन का। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य की बात हमने कर ली है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से मनोरंजन की और आगे बढ़ते हैं गीत की ओर। प्यासा सावन, इस फिल्म का गीत अब लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। लीजिए, एंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को।
1: साथ AI पावर

अभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और आप सभी ने ट्यून कर रखा है इस समय 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम में। इस प्यारे से गीत के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे श्रोताओं और आपके साथ करेंगे बातचीत। श्रोताओं, कई बार हमारा नज़रिया जो है गलत हो जाता है, लेकिन हम सोचते हैं हमारी जो सोच है वो बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही हैं, दूसरे गलत हैं, पर कई बार हम ही गलत होते हैं। इस बात को किस तरह से हम समझ सकते हैं, उसके लिए आपको आज सुनाएंगे एक कहानी। उस कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा श्रोताओं, और उस कहानी का निचोड़ भी यही कहता है कि फ़ैसले हमें बहुत जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, अपना नज़रिया एकदम से नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा सोच विचार कर लेना चाहिए। तो श्रोताओं, आप सभी ने अगर सुननी है कहानी तो आपको बने रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको इंतज़ार कहानी के लिए, और उससे पहले फिर से आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा सा गीत। तो चलते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम में लेकर आते हैं एक और प्यारा सा गीत विधाता फिल्म से, सुरेश वाडकर और अनवर की प्यारी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप सभी तक पहुंचा रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम रुकेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको मैंने सुनवानी है कहानी जिसका वादा किया था और आप सब भी तैयार बैठे होंगे कहानी सुनने के लिए। तो श्रोताओं, इस अंतराल के बाद सुनते हैं कहानी, तो जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, आप सभी आज सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो श्रोताओं, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं कहानी के बारे में, और आप सभी भी तैयार बैठे होंगे कहानी सुनने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, अब देर नहीं करेंगे और आपको सुनाएंगे कहानी। श्रोताओं, कहानी ऐसी है कि एक घर में एक बेटा था, और वो बेटा सामने सोफे पर बैठा था, दूसरी साइड उसके पिताजी बैठे थे, और सेंटर टेबल पर एक बाउल पर या किसी एक टोकरी में दो सेब पड़े हुए थे, और पिता को भूख लगी हुई थी। उसका मन किया कि मैं एक सेब उठा लूँ। इतने में क्या हुआ कि बच्चे शरारती होते हैं और बेटे ने एक सेब उठा लिया। तो इस हरकत पर जो पिता थे वो मुस्कुराए और सोचने लगे कि कोई बात नहीं, बेटे ने एक सेब ले लिया तो क्या हुआ, दूसरा सेब तो अभी भी पड़ा है, मैं वो उठा लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया सेब उठाने के लिए, तो उस बेटे ने वो सेब भी उठा लिया। तो वही बात है, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, हंस देते हैं आगे से। तो पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आप एक सेब खा लो, एक सेब मुझे दे दो। तो बेटे ने क्या किया कि एक सेब को बाइट कर लिया, मतलब कि खाना शुरू कर दिया। और पिता ने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक सेब खाया है, दूसरा तो वो मुझे दे ही देगा। जब उन्होंने दूसरा सेब मांगा तो बेटे ने फटाफट दूसरे को भी बाइट कर लिया, यानी कि खाना शुरू कर दिया। तो ये सब देखकर थोड़ी देर के लिए पिता को हैरानी भी हुई, और वो सोचने लगे कि मैं तो सोच रहा था कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन इसने तो दोनों के दोनों सेब जो है वो खाना शुरू कर दिया था। तब पिता ये सोचते हैं कि आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, हम बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ सोचते हैं, लेकिन ये बच्चे हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पिताजी एक सेब मांग रहे हैं तो मैं दे दूँ, और ऐसा सोच के वो उदास से हो जाते हैं, और उसकी सोच पर बहुत सारी जो एक सोच विचार उनके दिमाग में आ जाता है कि बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे वैसे होते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करते हैं, ये सब उधेड़ बुन जो है उनके दिमाग में चल रही थी। इतने में क्या हुआ, सामने से बच्चे ने अपने फादर को एक सेब देते हुए कहा कि पापा ये वाला सेब खा लीजिए, ये मीठा है और दूसरा वाला फीका है। तो श्रोताओं, जब बच्चे ने ऐसा बोला, कहीं ना कहीं पिता ने सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन बात का नतीजा जो कुछ और ही निकला है। और श्रोताओं, ये कहानी जो है ना, वो हमें कहीं ना कहीं रिलेट करती है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके मिलते हैं, और हम भी कई बार किसी बात को लेकर अपने नज़रियों को कुछ और ही बना लेते हैं, जबकि उस बात के पीछे कहानी कुछ और होती है या उसका सार कुछ और होता है। हम नतीजा निकालने में या नज़रिया बनाने में कुछ ही सेकंड लगाते हैं, और कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, किसी ने हमें भी नहीं सुना होगा, पूरी पूरी बात हमारी सुनी नहीं होगी, हमारा पार्ट उन्होंने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, और बहुत सारी गलतफहमियां उन्होंने अपने दिमाग में बना ली होंगी। और बहुत सारे लोगों के बारे में हमने भी ऐसा ही किया होगा, हमने भी उन्हें ढंग से सुना नहीं होगा, और सुन के एक नज़रिया अपने दिमाग में, उनकी एक पिक्चर जो है अपने दिमाग में ऐसी बिठा ली होगी उस बात को लेकर। तो श्रोताओं, टाइम दिया कीजिए हर किसी को, क्योंकि गलतफहमियां बिना साबित किए अगर बढ़ जाएं तो इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्तों को ख़राब कर देती हैं। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी नज़रिया बना लेने से पहले, उस बात को हमें समझना चाहिए कि ये बात क्यों हुई है, क्योंकि उसी पल में वो चीज़ जो है वो हमारे फेवर में होती है या हमारे फ़ायदे में होती है। तो श्रोता, ये छोटी सी कहानी जो मैंने सुनी थी और मुझे भी अच्छी लगी, कहीं ना कहीं सोच बदलने में ये सहायक लगी, तो ये कहानी आप तक पहुंचाई है। आशा करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी, और इससे

हमें यही सीखने को मिलता है कि बहुत जल्दी फैसले नहीं लेने चाहिए, थोड़ा सा समय ज़रूर देना चाहिए। तो श्रोताओं, इस कहानी के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में चलते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत। अदनान सामी की आवाज़ में श्रोताओं ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी रेडियो सेट पर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपको सुनाते हैं प्यारे प्यारे गीत और आपके साथ करते हैं बातें। तो श्रोताओं, ऐसे में थोड़ी सी बात हम करेंगे रिश्तों को लेकर। कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को हमें समय देना चाहिए। हम आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं अपने काम काज में, हमें नहीं मिलता समय। खैर, हम अपने घर के सदस्यों के साथ भी बात कर लें तो उसके लिए भी हमारे पास कई बार समय नहीं होता। खाना खाने के लिए अगर हम साथ बैठते हैं तब भी हमारे पास हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है, तो वो बातें कहीं ना कहीं गुम सी हो गई हैं। तो श्रोताओं, थोड़ा सा समय अपने रिश्तों को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए और एक दूसरे के साथ ज़रूर पूरे दिन में क्या हुआ, क्या किया, क्या सोच विचार आपके दिमाग में है, वो सब एक दूसरे के साथ ज़रूर साझा करना चाहिए। और ऐसा करने से कई बार बहुत सारी उलझनों से हम निकल जाते हैं, बहुत सारे तनाव से बाहर निकलते हैं। कई बार सोच सोच के हम अकेले में ही बात करना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी से बात करेंगे तो कोई ना कोई हल हमें ज़रूर मिलता है। तो रिश्तों को समय दीजिए, अपने लाइफ में कुछ समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का। तो चलते हैं, पहले सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, बाकी की बातें समाचारों के बाद।
1: और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को बताया महत्वपूर्ण। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों से मेहनत व सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार शुरू करेगी हाई वैल्यू नट मिशन। भाजपा ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर जताई चिंता। और रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित 17 पंचायतों के लोगों ने विकास कार्यों के लिए सरकार से बजट उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि धरती का औसत तापमान वर्ष 1900 की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर चेतावनी का संकेत है।
2: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन व सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। ऊना जिला के पालकवाह में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल व रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरोली के खड्ड क्षेत्र में आधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर पहले चरण में 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि दुर्गम क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र की सोलंग पंचायत में आज उन्होंने कहा कि राज्य के कुल बजट का करीब 18% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाया जा सके। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में करीब 3000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं। वे आज प्रदेश के मेधावी आईटीआई विद्यार्थियों के एक दल को नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के लिए कजाकिस्तान रवाना करने के अवसर पर बोल रहे थे। राजेश धर्माणी ने उम्मीद जताई कि ये विजिट विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों, उन्नत औद्योगिक प्रक्रियाओं और वैश्विक कार्य संस्कृति को निकट से समझने व सीखने का अवसर प्रदान करेगा। राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 से 2031 तक हाई वैल्यू नट मिशन की शुरुआत करेगी। इस मिशन के तहत अखरोट, बादाम, खुमानी और चिलगोजा जैसे नट फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन के तहत करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागों के कायाकल्प और उच्च घनत्व पौधारोपण के तहत शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि ये पहल इन फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानी को एक सुदृढ़ तकनीक आधारित और बाजारोन्मुखी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अर्की उपमंडल के दारलाघाट में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्रीड़ा भारती अर्की टोली के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी खेल गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है।
3: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी समारोह में क्रीड़ा भारती ने वॉलीबॉल चैंपियनशिप की है। मैं नौजवानों के अंदर खेल भावना पैदा करने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे युवा प्लेयर्स जो हैं उनको एक मंच देने का काम किया है। मैं इस टोली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह सेवा प्रमुख राजेंद्र वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIR_News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में सुनियोजित तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो भाजपा राज्य में जन आंदोलन शुरू करेगी।
4: भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, परंतु सरकार नहीं चेती और ये उससे और अधिक स्थिति आज विस्फोटक हो। यही स्थिति बरकरार रही तो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर एक बार फिर जन आंदोलन खड़ा करेगी।
1: दूसरी ओर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने का दावा किया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा ने पार्टी में करीब 32,000 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए मोर्चा गंभीरता से काम कर रहा है।
5: 4 महीने से लगातार अनुसूचित जाति मोर्चा प्रत्येक बूथ पर 5 अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो काम किया, हिमाचल प्रदेश के 8,000 बूथों में से 6,000 बूथों पे 32,000 जो कार्यकर्ता मोर्चा ने जोड़े हैं, आने वाले 3 महीने के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता से हमारा पदाधिकारी जाएंगे, मिलेंगे, उनका सत्यापन होगा और उन सूचियों का पुनरीक्षण होगा, ताकि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें अनुसूचित जाति मोर्चा की जो एक निर्णायक भूमिका है उस भूमिका को निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश का एससी मोर्चा अनुसूचित जाति वर्ग के घर घर जाएगा, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में अलख जगाएगा।
1: सिरमौर जिला में रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित 17 पंचायतों के लोगों ने सरकार से प्रभावित पंचायतों को विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि बजट के अभाव में प्रभावित पंचायतों में स्कूलों और सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विस्थापित परिवारों ने अन्य लंबित मांगों के जल्द समाधान का भी आग्रह किया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। ऊना जिला में आज सुबह हुई भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाएं चलने और व्यापक वर्षा से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और जगह जगह यातायात भी अवरुद्ध रहा। इस दौरान ऊना शहर समेत जिला के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी सामने आई। राज्य के अन्य जिलों में भी मॉनसून की वर्षा से इन दिनों नदी नाले उफान पर है और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। चंबा जिला में भी मॉनसून की वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला में कई संपर्क मार्ग भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हैं, जिन्हें बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी जुटी हुई है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत भविष्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को बताया महत्वपूर्ण। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों से मेहनत व सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार शुरू करेगी हाई वैल्यू नट मिशन। भाजपा ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर जताई चिंता और रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित 17 पंचायतों के लोगों ने विकास कार्यों के लिए सरकार से बजट उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी बने हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और श्रोताओं, समाचारों के साथ साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत आप तक पहुंचाएंगे जख्म फिल्म से कुमार शानू की आवाज़ में। और इस गीत के साथ अब मैं आपसे लूँगी अनुमति आज के लिए। तो श्रोताओं, अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के लिए। इस गीत को सुनिए और मुझे दीजिए जाने की इजाज़त।

0: रन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चले।
2: थोड़ी देर और। मुझे गिफ्ट नहीं बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: Subscribe.
1: Testing.
2: Test.
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो.
1: टेस्टिंग
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं. ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा. अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं. HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं. तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर.
5: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर. याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है. अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं. इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है.

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा है? आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

आप सभी का अपना रेडियो चैनल धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन धर्मशिखा के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। हिमाचल के मंदिरों में दान की गिनती की होगी वीडियोग्राफी। मेडिकल कॉलेजों में 125 करोड़ से स्थापित होगी ऑटोमेटेड लैब। अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। तेल बाजार पर मंडराया संकट, महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, आईईए की बड़ी चेतावनी। भारत न्यूजीलैंड ने संबंधों को दिया रणनीतिक महत्व का दर्जा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA ने प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के 105 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी के मद्देनजर आयोग ने तीनों पोस्ट कोड के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 11 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक पुनः खोल दिया है। अभ्यर्थी 25 जुलाई 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल की माटी पर किसानों की समृद्धि की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समृद्धि की इस कहानी की रूपरेखा तैयार की है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से किसानों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वर्ष दर वर्ष इसमें उल्लेखनीय वृद्धि भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार वर्ष 2026 से 2031 हाई वैल्यू नट मिशन की शुरुआत करेगी। इस मिशन के तहत अखरोट, बादाम, खुमानी तथा चिलगोजा जैसे उच्च मूल्य वाली समशीतोष्ण टेम्परेट नट फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मिशन बागवानी क्षेत्र के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों जैसे पुराने हो चुके बागानों, कम उत्पादकता, कटाई के बाद पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी तथा मूल्य संवर्धन की सीमित अवसरों का समाधान करेगा। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद हिमाचल सरकार ने राज्य के सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले मंदिरों तथा अन्य प्रमुख मंदिरों में

सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए SOP जारी की है। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य श्रद्धालुओं के दान, आभूषण, नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों में सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिर प्रबंधन समितियों को भी इन सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI सुविधा का शुभारंभ किया। IGMC शिमला के बाद ये उन्नति मेजरिंग तकनीक हासिल करने वाला चमियाना संस्थान प्रदेश का दूसरा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 3 टेस्ला MRI मशीन के चालू होने से संस्थान के विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों की जांच क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये मशीन न केवल उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग देगी बल्कि बेहद कम समय में जांच पूरी कर सटीक निदान सुनिश्चित करेगी। दुनिया में एक बार फिर तेल संकट गहराने की आशंका जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका और ईरान के बीच तनाव बढ़कर बड़े युद्ध का रूप ले लेता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और ईंधन के कीमतों पर पड़ सकता है। IEA का कहना है कि फिलहाल वैश्विक तेल बाजार धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव इस सुधार को कभी भी पलट सकता है। अगर इस क्षेत्र में तेल उत्पादन या समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई घट सकती है और पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सुरक्षा पर समझौता करने के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के साथ भी समुद्री सुरक्षा सहयोग की शुरुआत की है। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है। ये रोडमैप समुद्री क्षेत्र में संवाद, सूचना साझाकरण, संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा, जिससे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि आएगी। साथ ही भारत न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक महत्व का दर्जा दिया है। देश के किसी भी स्थान से आने वाले पर्यटकों एवं यात्रियों के लिए हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा पुख्ता हो गई है। मेहमानों की यात्रा को अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने सभी नागरिकों के लिए रिटसेफ HP मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है। इसे पुलिस की ओर से डाउनलोड करने की अपील की जा रही है। इस ऐप को GNA यूनिवर्सिटी के तृतीय वर्ष के इंटर्नशिप के विद्यार्थियों में आर्यन और मोनू ने ऊना पुलिस संघ मिलकर तैयार किया था। बीते माह मई में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने इस ऐप का आरंभ किया और प्रदेश स्तर के लिए ऐप को डेवलप करने की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश के हकदार हैं। उन्हें केवल इस आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके अनुबंध में इसका उल्लेख नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि मातृत्व अवकाश एक वैधानिक अधिकार है जो किसी सेवा, अनुबंध या समझौते की शर्तों पर निर्भर नहीं करता। अदालत ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के द्वारा धारा 27 का हवाला देते हुए कहा कि गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ देना नियोक्ता का कानूनी दायित्व है। स्कूली शिक्षा निदेशालय ने विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए CBT शिक्षक के 72 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 जुलाई को होगी। शिक्षा निदेशालय ने जिलावार रिक्तियों को रोस्टर और पात्रता संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI की पढ़ाई अब पारंपरिक तकनीकी ट्रेडों तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 संस्थानों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 6 ITI में डेयरी, बागवानी और प्राकृतिक खेती के नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। इस गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: सलोन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर होगी। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
2: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
3: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
4: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सबका कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, अब खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी हैं, वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना, मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो शोतो आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: रन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें।
2: थोड़ी देर और। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
2: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
3: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सबका कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती थी, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आपकी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना श्रद्धा भक्ति और संगीत का संगम सुनिए हर सुबह सिर्फ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन के साथ।

दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आराधना, जहां मन को मिले सुकून और आत्मा को शांति। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों भक्ति के सुर आराधना की धुन, जुड़िए हमारे साथ हर दिन आराधना के संग। जिस तरह आप सभी जुड़े हुए हैं इस समय इस प्यारे से कार्यक्रम में आराधना, बिल्कुल दोस्तों ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं एक और भजन की ओर।